0: ਰਿਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ। ਸੋਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ।
0: ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਖੜੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
1: ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਮੇ
0: ਜੀ,
1: ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਜ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਹੋ ਗਿਆ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੇਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸੇ 6 ਵਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਸਬਰੰਗ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਜ਼, ਯੂਟਿਊਬ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸਮੇ ਹਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ ਸਭ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਵੋ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਸਿਹਤ ਕਾ, ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਾ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਹੋ, ਯੇ ਬਣਾ ਕੈਸੇ ਥਾ, ਇਸ ਚਲ ਕੈਸੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੋ ਔਰ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੀ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਤੋ ਬਾਂਟਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਟੋਗੇ ਉਤਨਾ ਬੜੇਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਬਾਂਟੋਗੇ ਉਤਨਾ ਬੜੇਗਾ। ਸੋ ਵਹੀ ਨੀਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੇ ਤੋ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਯੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਕੈਸੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਯੇ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਹਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਚੈਸਟ ਮੇ, ਔਰ ਚੈਸਟ ਮੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਥੇ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੋ ਮੈਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੋ ਮੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਏ ਥੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੇ ਮੀਡੀਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕਾਮਨ ਪਾਥਵੇ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਵੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਆਰਟਰੀਜ ਹੈ, ਵੇਨਸ ਹੈ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਨਾਲੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਕੀ ਨਾਲੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਰਟ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੈਂਡ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਅਯੋਟਾ ਕਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਲੈਰਿੰਗਸ ਕਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਫੂਡ ਪਾਈ ਕੋਈ ਈਸੋਫੇਗਸ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਯੇ ਸਭੀ ਕੇ ਸਭੀ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਇਧਰ ਸੇ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਅੰਗੋ ਕੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਈਸੋਫੇਗਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਯੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਬੇਚਾਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਕਿਆ ਯਾਰ ਤੁਮ ਸਦਾ ਤੋ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਭੀ ਕਭੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਬਹ ਮੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਮੇ, ਯਾ ਸ਼ਾਮ ਮੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ, ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਮਹਾਰਾ ਕਾਮ, ਤੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਮੇ ਰਾਸਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੋ ਤੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਬਾਕੀ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਯੋਟਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਹੈ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾ ਹੈ, ਯਾ ਹਾਰਟ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਯਾ ਫੇਫੜੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤੋ ਯੇ ਇਸਸੇ ਰਾਸਤਾ ਲੇ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਮੇ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਘੁਟਨ ਆ ਜਾਤੀ ਕਿ ਤੁਮ ਥੋੜਾ ਹਟੋ ਯਾਰ ਪਾਸੇ, ਵੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸੇ ਅਲਗ ਹਟਨੇ ਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸਮੇ ਟੇਢਾਪਨ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਨੇ ਨੋਟ ਕੀਏ ਥੇ ਕਿ ਇਸਮੇ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਹਾਂ ਸੇ ਬ੍ਰੌਂਕਸ ਇਸਸੇ ਅਲਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੇਨਾ ਕੇਵਾਜ਼ ਆਤੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਸੇ ਓਲਟਾ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਰਟ ਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਚਾਰ ਮੇਨ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਈਸੋਫੇਗਸ ਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਮੁਝੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਜੋ ਯੇ ਛਾਤੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਥਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਯੇ ਮੀਡੀਆਸਟਾਈਨਮ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸਮੇ ਇਤਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ, उसके बाद हमने ये आपको बताया था हार्ट के बारे में और हार्ट के मसल्स कैसे हैं, हार्ट के चैम्बर कितने हैं, हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का सर्कुलेशन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे इसमें सर्कुलेशन चलन होता है, इसके जो वाल्व्स हैं उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, ये सब चीजें मैंने आप सब लोगों को बहुत आसान लैंग्वेज में बता दी, बहुत से प्रोग्रामों में बता दी कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, तीनों लैंग्वेज में मैंने ये चीज एक एक प्रोग्राम में बता दिया कि हार्ट को, क्योंकि हार्ट को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, है भी इम्पोर्टेंट ऐसा ऑर्गन है ना, तो इसलिए जितना भी हो सका मैंने इसके लिए आपको डिटेल बार बार दोहरा दी। फिर भी अगर किसी सज्जन मित्र को ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे तो और जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो वो अलग से फोन करके पूछ सकता है 4086871899। किसी भी वक्त जितनी जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी सिस्टम में, चाहे ब्रेन की बोलूं, चाहे गले के बारे में बोलूं, चाहे छाती के बारे में बोलूं, या एब्डोमेन के बारे में बोलूं, किसी भी वक्त किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है या उसके बारे में कोई शंका है या आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि और जानकारी मिले, तो आप किसी भी वक्त मेरे से फोन पे बात करके और उसका हल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें जितनी मैं बोल रहा हूँ ये मेरे ब्रेन में सेट की हुई है, इनके लिए मुझे किताबें खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती। हाँ, विषय जो मैंने करना है वो ठीक मुझे देखना पड़ता है कि आज मैंने क्या करना है। जैसे हम लोग छाती पर पहुंचे हैं तो छाती के जो मेन मीडियास्टाइनम को कवर कर लिया, हार्ट को कवर कर लिया, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है यहाँ पर वो चेस्ट है, सॉरी लंग्स है। तो लंग्स के बारे में बात करते हुए आज मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, हालांकि हमारा जीवन ही हवा है, दम आया तो हम हैं आदमी हैं, दम नहीं आया तो हम डेड बॉडी हैं। सो वो दम को चलाने वाला जो ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स। तो शरीर में जो लंग्स है ना वो दो है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, और आम लोग सभी ये तो जानते ही हैं, लेकिन इसकी और बहुत सी बारीकी है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के प्रोग्रामों में, कि एक तो इसका कलर पिंक होता है, एक ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं। और ये जो बातें हैं बेशक आम आदमी की जानकारी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग एटॉप्सी करते हैं या जो लोग बायोप्सी करते हैं उनके लिए, जो डॉक्टर लोग जो जिंदा पीस लेकर चेक करते हैं कि उसमें क्या खराबी आ गई है उनके लिए, या एटॉप्सी डेड बॉडी की जब छानबीन करते हैं ये कैसे मरा क्या हुआ जो वो होता है उसको एटॉप्सी बोलते हैं, तो वो एटॉप्सी जब करते हैं उनके काम की चीज है कि कैसे मरा क्या हुआ इसमें रंगत कैसे चेंज होगी, तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसका जाना जाए कि रंग नॉर्मल रंग क्या है। तो नॉर्मल रंग इनका पिंक होता है, स्ट्रक्चर उसका जो स्पंजी होता है सॉफ्ट होते हैं, और आमतौर पे हमने बार बार कहा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये प्रेस किए रहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आना शुरू होता है और जो हमारे एनवायरमेंट का जो 480 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर उस पर पड़ता है तो एकदम उसकी चीख निकल जाती है ऑटोमेटिक, और उसी चीख की वजह से बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है, और बाहर की हवा अंदर पहुंच जाती है और ये फूल जाते हैं, ये फूल जाते हैं। केवल ये ही नहीं फूलते, इनके साथ और बहुत सा स्ट्रक्चर चालू हो जाता है जो पहले बंद था। जैसे मैंने कहा कि सारे शरीर का खून इकट्ठा होकर राइट एट्रियम में हार्ट के ऊपर वाले खाने में आता है, और उसके बाद वहां से फिर नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर एक नाली निकलती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, और वो फेफड़ों में लेकर जाती है। इसमें जो वाल्व लगा हुआ है वो बेचारा दरवाजा इस टाइप का है, आप वैसे तो दरवाजा होगा ना, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, लेकिन ये दरवाजा एक ही तरफ खोलता है। जितने भी हार्ट के अंदर सेमीलूनर वाल्व है वो सभी एक ही तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं। तो इसमें एक सेमीलूनर वाल्व लगा है जिसकी वजह से ये खून जितना भी राइट वेंट्रिकल में आया वो फेफड़ों में जाना शुरू होता है, तो पंप हुआ फेफड़ों में गया वापस नहीं आ सकता, उसमें वापस दूसरे पासे से शरीर से जो आ रहा है खून वही आएगा हार्ट में। तो इस तरह का जो चलन इस चीज का है फेफड़ों का, ऐसे इनको खून मिलता है। अब उसकी जो अंदर की डिस्क्रिप्शन है ना वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। एक तो ये मैंने कहा कि लंग्स दो होते हैं, एक को राइट लंग बोलते हैं एक को लेफ्ट लंग बोलते हैं। इनकी जो शेप होती है स्पंजी होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। इसकी जो शेप अगर देखें बाहर से तो तो बाहर से जो शेप इसकी जैसे पिरामिड है ना, पिरामिड के बारे में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं जी, पिरामिड की तरह कोई ऊपर को चोटी है, बीच को जो चौड़ाई है बढ़ती जाती है, नीचे बेस आ जाता है। लेकिन बेस की एक इसकी और खासियत है, बेस इसका डोम शेप है। ऐसे ना कि बेस ऐसे नहीं कि लाइन सीधी आ गई, ऐसा नहीं है, ऊपर त्रिकोण है, कोण बना हुआ टॉप में जो वहां पर हमारी हसली की हड्डी है उसके नीचे आता है, और नीचे जैसे जैसे आता है ये थोड़ी इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, और जैसे नीचे इसका बेस आता है तो बेस के अंदर गुंबद की तरह है, जैसे मंदिर में या गुरुद्वारों में गुंबद ऊपर बने होते हैं ना तो अंदर से खाली होते हैं, तो इसी तरह जो अंदर का जो बेस है नीचे का वो गुंबद की तरह है। और ये क्यों है, इसलिए कि राइट साइड में फिर पसलियों के नीचे ही, क्योंकि इसका एरिया तो पसली के अंदर अंदर है ना, अपनी जो रिब सेवन के अंदर अंदर है, और उसके राइट साइड में हमारा लिवर होता है, बहुत ज्यादा पोर्शन लिवर का जो राइट साइड में होता है, हालांकि कुछ जो है लेफ्ट लोब जो है वो बाई तरफ भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, और बाई तरफ स्प्लीन होती है, तिली जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो इसलिए अंदर से बेस जो इसका है फेफड़ों का वो डोम शेप इसी तरह का बना हुआ है। दूसरा इसकी शक्ल में एक अंतर है कि जो राइट लंग है ना वो हाइट में कम है। हाइट में कम क्यों है, क्योंकि लिवर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो नीचे है, कवर कर लेता है पसलियों को, और वो बहुत बड़ा पोर्शन नीचे पसलियों का जो कवर कर लेता है तो फिर भाई इसके लिए स्पेस ऊपर कम बढ़ जाती, लेकिन ऊपर वाली स्पेस बेशक थोड़ी बचती है लेकिन उसके भी तीन पोर्शन है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब, तीन लोब। लोब का मतलब है हिस्से, और अलग अलग हिस्से, एक हिस्से का दूसरे हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट उनका कोई लेना देना नहीं। अगर वो जो संबंध है अंदर ब्रोंकस से ही है वो मैं बता रहा हूं अभी आपको, सो डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं होता। और जो हमारा बाया लंग है, बाया फेफड़ा है तो उसकी भी अजीब रचना कि वो होता तो थिन है, पतला होता है, लंबाई में राइट लंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि स्प्लीन बहुत छोटी है, थोड़ा कवर करती है पसलियों का, और ऊपर से लेकर हमारी क्लेविकल की हड्डी से लेकर नीचे तक जाते जाते काफी राइट लंग से लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें एक और है, मीडियल साइड, मीडियल साइड हम उस चीज को बोलते हैं जो किसी के सेंटर के नजदीक होती है, और इसका दूसरा नाम ये होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। जो दूर होता है उसको हम डिस्टल बोलते हैं। मैं और आसानी से समझा दूं आपको, अगर हमने हाथ का बात करने हो तो हाथ बॉडी से डिस्टल पोर्शन है, दूर का हिस्सा है, शोल्डर है ये हमारा मीडियल पोर्शन है, मिडल का पोर्शन है, इसको हम प्रॉक्सिमल बोलते हैं। तो फेफड़ों की बात अंदर आ गई तो फेफड़ों का जो पसली जो हमारी स्टर्नम है सामने छाती की हड्डी है जो इसके नजदीक है उसको हम इसको मीडियल पोर्शन बोलेंगे या प्रॉक्सिमल हिस्सा बोलेंगे, ठीक है। और जो दूर का बाहर का पसलियों के साथ लगा हुआ इनका हिस्सा है बाहर का उसको हम डिस्टल पोर्शन बोलेंगे, तो ठीक है। ये राइट साइड में जो मीडियल पोर्शन है, लेफ्ट लंग्स का जो मीडियल पोर्शन है वो अंदर से खुरचा हुआ है, ऐसे जैसे किसी को बीच में काट दिया हो। वो काटने का मतलब ये है कि उस हिस्से में हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट ने बहुत सारा हिस्सा फेफड़ों का ले लिया है, वो बाईं तरफ ले लिया है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जब हार्ट की बात मैंने करी थी तो मैंने ये कहा था कि हार्ट की जो बाउंड्री है बेशक ज्यादा बाईं तरफ है, हमारी हार्ट में ब्रेस्ट की जो निप्पल होती है ना इससे सीधे 3.5 इंच अगर हम नीचे आते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की आखिरी बाउंड्री के तेरी हद यहां पर है भाई, वहां तक हार्ट की बाउंड्री होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको हम बोलते हैं। और दाहिने साइड में हम बोलते हैं कि दाहिने साइड में तो हार्ट नहीं है, थोड़ा सा पोर्शन है, जैसे हमारी सामने की छाती की जो हड्डी है ना इसको हमने स्टर्नम कहा था, इस स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर राइट साइड में भी हार्ट को जगह मिलती है जो राइट दाहिने फेफड़े से मिलती है। तो मतलब इस तरह की ये इसकी हार्ट की पोजीशन है जो हम बाहर से भी जान सकते हैं, अगर किसी की छाती को देखते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बाहर पेंसिल अगर लाइन लगानी हो तो हम लगा सकते हैं कि ये हार्ट की बाउंड्री यहाँ यहाँ पर इसकी है। तो मतलब क्या हुआ कि बाईं तरफ का फेफड़ा वो इसी तरह नीचे से कर्व बना हुआ है, कर्व की तरह है, क्योंकि वहां पर हार्ट को एडजस्ट कर दिया गया। तो दूसरी एक अलग बात ये है कि लेफ्ट फेफड़े में दो लोब होते हैं, राइट में तीन, बाएं में दो लोब होते हैं, और दो लोब जो होते हैं उनमें भी पोर्शन जो है नीचे वाले लोब का ज्यादा पोर्शन हार्ट ने कवर किया है। एक और बात इसमें अजीब बात है कि ऊपर वाला जो लोब है उस लोब से एक छोटा सा पोर्शन अलग नीचे को आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअला, लिंगुअल बोलते हैं जीभ को, लिंगुआ जीभ का दूसरा नाम है और लैटिन वर्ड है। तो लिंगुआ का मतलब है जीभ, जैसे हमारी जीभ होती है इस तरह का एक छोटा सा पोर्शन लेफ्ट लोब के ऊपर वाले लोब, लेफ्ट लंग के ऊपर वाले लोब से आकर हार्ट को और सेपरेट कर देता है फेफड़ों से कि भाई ना ना ना तुम आगे नहीं आना, यहाँ पर ये बाउंड्री है इसकी, और वहां पर भी फेफड़ों का थोड़ा हिस्सा है जिसको हम लिंगुला बोलते हैं। तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई है तो इसके भी तीन ही है ना, नहीं तीन नहीं है, लोब तीन नहीं है, क्योंकि लोब की जो डिस्क्रिप्शन में अभी आपको बताने वाला हूं कि जितने भी लोब है ना फेफड़ों में, राइट में हमने तीन बताया, लेफ्ट में हमने दो बताए और एक ये लिंगुला बताया, इसको लिंगुला को हम लोब नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जो दूसरी डिस्क्रिप्शन है ना वो ये पूरी नहीं करता। वो क्या है कि जितने भी ये फेफड़े हैं, या वैसे भी मैंने ये कहा था कि जितने भी अंग हैं शरीर में सभी अंगों को कुदरत ने एक गिलाफ में लपेट कर वहां पर रखा हुआ है ताकि उनको पता रहे कि मेरी आखिरी बाउंड्री ये है। और इसी तरह ही फेफड़ों को भी ऊपर से कवर किया हुआ है और उसका नाम है प्लूरा। प्लूरा एक गिलाफ की तरह है, जैसे गिलाफ रजाई के ऊपर हम चढ़ाते हैं ना, तो दो लेयर होते हैं उसके अंदर हम रजाई को डाल देते हैं, सिरहाने के दो लोब होते हैं उसके अंदर सिरहाना डाल देते हैं, तो इसी तरह ये इसके दो लोब होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। जो हार्ट के ऊपर था उसको पेरिकार्डियम में कहा था हमने, और इसको हमने प्लूरा कहा था। और ये जो प्लूरा है इसके दो पर्दे मैंने आपको बताया, एक तो बाहरी बाहरी पर्दा है जो पसलियों के साथ लगता है, दूसरा पर्दा जो है वो हर एक लोब के अंदर जाता है। यही डिफरेंशिएशन हो गया कि ये तीसरा जो मैं लिंगुला बताया है ये लोब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो मेम्ब्रेन जा नहीं रहा, जो अंदर का मेम्ब्रेन है इस प्लूरा का वो हरेक लोब के अंदर बाहर जा रहा, उसकी बाउंड्री को फिक्स कर रहा है कि ना भाई तू दूसरे लोब के साथ अटैच नहीं होगा ना, तेरा अलग बाउंड्री है उसकी अलग बाउंड्री, आपका कोई लेना देना नहीं है। सो अंदर का लेयर जो है वो फेफड़ों के अंदर सेपरेशन करता है उनको, लेकिन इस लिंगुअल को तो इस तरह का कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए ये एक सेपरेट सा चीज हो जाती है सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए कि अगर कई प्रॉब्लम हार्ट फेफड़ों को आ जाए तो कम से कम हार्ट उससे भी जरूरी है। खुराक बेशक हमारे घर में पड़ी रहे और हमको खाने नहीं को देगा तो वो कैसे होगा, तो हार्ट ने तो सारे शरीर को खाने के लिए देना है, इसलिए इसको कोई रुकावट नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने एक छोटी सी जीभ की तरह का छोटा सा पोर्शन लगा दिया। सो मैं ये कह रहा था कि हर एक फेफड़े के ऊपर कवरिंग किया हुआ है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, बाहर का जो उनका लेयर है वो पसलियों के साथ साथ पूरे को कवर करता है, अंदर का जो लेयर है वो हर एक लोब के अंदर, यहां पर लोब का हिस्सा है इसके अंदर कवर करेगा, फिर बाहर आ जाएगा फिर दूसरे लोब को कवर करेगा, ताकि लोब का आपस में कोई कनेक्शन ना रहे, और अगर इनका कोई कनेक्शन है तो वो जो सांस की नली ऊपर से आ रही है जिसकी बात मैं अभी करता हूं वही कनेक्शन इनका रहेगा, डायरेक्ट इनका आपस में कोई कनेक्शन लोब्स का नहीं रहता। सो तीन लोब राइट साइड में, दो लोब हमने बताए बाएं फेफड़े में, तो इनके अंदर जो अंदर का लेयर है ये अंदर जाता है लोभ के अंदर, और फिर क्योंकि फेफड़ों को फैलना है, नीचे को भी ऊपर को भी, नीचे को भी ऊपर को भी, बाहर को भी फैलना है, जैसे हवा जाएगी उसी तरह वो फैलेगा, तो फैलने के लिए फ्रिक्शन ना हो, जैसे तेल डालते हैं उसमें मोबिलाइल, इसकी मोबिलाइल डालते हैं, तो मोबिलाइल डालने का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ना हो, या इसका तेल का कोई इंजन को नुकसान ना हो। इसी तरह कुदरत ने इसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको इंटरस्टीशियल फ्लूड हम बोलते हैं, जिससे लुब्रिकेशन रहती है। जब फेफड़े फौलते हैं हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इंस्पिरेशन होता है और उससे फेफड़े फैलते हैं और पूरी जितना उनका एरिया है उसको कवर कर लेते हैं। तो वो टच करेगा उसको बाउंड्री को, जो बाहर की बाउंड्री है, तो उसको रगड़ ना लगे क्योंकि इसके अंदर का भी लेयर है। तो इसी तरह ही जो फेफड़े खुद इटसेल्फ लोभ भी फैलते हैं, तो लोभ में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोब्स के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया। पहली तो बात लोभ की बता दी कि राइट साइड के तीन लोभ हैं, बाईं तरफ के दो लोभ हैं, एक छोटी सी का मतलब होता है कि फ्रिक्शन ना हो, या इसका तेल का कोई इंजन को नुकसान ना हो। इसी तरह कुदरत ने इसमें एक फ्लूड रखा हुआ है जिसको इंटरस्टीशियल फ्लूड हम बोलते हैं, जिससे लुब्रिकेशन रहती है। जब फेफड़े फौलते हैं हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो इंस्पिरेशन होता है और उससे फेफड़े फैलते हैं और पूरी जितना उनका एरिया है उसको कवर कर लेते हैं। तो वो टच करेगा उसको बाउंड्री को, जो बाहर की बाउंड्री है, तो उसको रगड़ ना लगे क्योंकि इसके अंदर का भी लेयर है। तो इसी तरह ही जो फेफड़े खुद इटसेल्फ लोभ भी फैलते हैं, तो लोभ में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोब्स के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया। पहली तो बात लोभ की बता दी कि राइट साइड के तीन लोभ हैं, बाईं तरफ के दो लोभ हैं, एक छोटी सी स्लेट है जिसको लिंगुला हमने बोल दिया है, और इनका कवरिंग

लोभ भी फैलते हैं तो लोभ में भी फैलने से इसकी अपनी कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये अंदर का जो लेयर होता है ये लोभ के अंदर तक जाता है, फ्लूड हर जगह वो फैला रहता है, फ्रिक्शन ना हो। तो ये मैंने आप सब लोगों को बताया, पहली तो बात लोभ की बता दी कि राइट साइड के तीन लोभ हैं, बाईं तरफ के दो लोभ हैं, एक छोटी सी स्लेट है जिसको लिंगुला हमने बोल दिया है, और इनका कवरिंग जो है उसको हमने प्ल्यूरा बोला है, और प्ल्यूरा के दो लेयर होते हैं, दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड रहता है ताकि अंदर के जितने भी अंग हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग हो, चाहे स्टोमिक हो, चाहे लिवर हो, जितना भी इनको फैलना है, जिनकी की बाउंड्री है, बाउंड्री में फैलने के बाद दूसरे अंगों को इसकी कोई तकलीफ ना हो, ये इसकी बाउंड्री। और उसके बाद मैंने आपको ये कहा कि ये ऊपर की तरफ जो बने हुए पिरामिड की तरफ बने हुए एपेक्स जो है, जब आप अपनी हसली की हड्डी और सामने स्टर्नम की हड्डी को यहाँ पर आप टच करेंगे ना, और इसमें एक गैप है हसली की हड्डी और पहली पसली के बीच में, वहां तक इसकी टॉप जाती है। ये मैं खास तौर पे ऐसे कह रहा हूं कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं, क्योंकि हवा ज्यादातर जाकर अगर कहीं रुकती है, जिसको हम इम्फाइसेमा बीमारी का नाम लेते हैं, वो ज्यादातर ऊपर वाले हिस्से में रुकती है, और इसलिए वो अपेक्स में जैसे हवा जाती तो है, हवा का काम ही है ऊपर को जाना, भारी चीज को नीचे को बैठना है, तो ऊपर जितनी भी गैसेज या वगैरह कुछ होती हैं और वो ऊपर को जाती है, पेक्स तक चली जाती हैं, और लेकिन खुदा ना खास्ता कोई इन्फ्लेमेशन है, कुछ ऐसी सोज हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है वो हवा ऊपर गई यहाँ बिल्कुल टॉप में और यहाँ पर ही आकर रुक गई और फिर वो वापस नहीं आ रही, क्योंकि सोज हो गई, फेफड़ों में सूजन होने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्फाइसेमा। इस तरह की प्रॉब्लम उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सो मैंने डिस्क्रिप्शन के आपको ये बताया, उसके बाद हाइलम की बात भी मैंने बता दी कि जो मीडियल पोर्शन है जहां लंग्स को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन नाक से आ रही है, जहां फेफड़ों को खून सप्लाई करने के लिए उसकी आर्टरी आ रही है, जहां से बाहर जाने के लिए वेन्स जो इसका गार्बेज इकट्ठा करके बाहर लेकर जा रही है वो आ रही है, तो वो जो हाइलम है, जैसे हमारी नाभि होती है तो नहीं होती है नाभि, तो नाभि की तरह एक ऐसा एरिया होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि राजमा, देखा होगा आपने राजमा का एक अंदर का हिस्सा होता है ना, जैसे वो राजमा की तरह अंदर का हिस्सा बना हुआ है, वो उतने उस एरिए में ही जितने भी ब्लड वेसल्स अंदर जाने वाले हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स बाहर जाने वाले हैं, जितनी भी नर्व्स अंदर जाने वाली हैं, ये सभी के सभी उस इतने छोटे से एरिए के अंदर अंदर पास करते हैं, और उसी एरिए में ही उनका आगे आगे पीछे किसी तरह कोई कनेक्शन नहीं है, सारी एंट्री जो है इसमें वहीं से होती है, उसको हमने हाइलम बोल दिया। उसके बाद अब आई इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात, सांस का काम है इसका, ज्यादातर सांस लेना हमें, ऑक्सीजन नाक से अंदर जाती है, और नीचे का जो पोर्शन है गले के नीचे है उसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स का जो हिस्सा है वो 10-12 सेंटीमीटर के करीब होता है। उसके बाद ये जो हमारा, जिसको हम नर्गट आम पंजाबी में घरों में बोलते हैं, ये जो कंडी सी है उभरा सा हिस्सा आप देखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, या इसका जो ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं हाई आयड बोन, हड्डी का नाम है हाई आयड बोन, और ये उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको हमने ट्रेकिया बोला था। तो ट्रेकिया इस तरह का स्ट्रक्चर कुदरत ने नेक में बनाकर रखा है कि भाई ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सिर से नीचे को जा रहे हैं, नीचे से ऊपर सिर को जा रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ऐसा ना हो जैसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते कि भाई इसको पूरा यहां से निकालना है तो पूरी सिक्योरिटी से निकाला जाए, इसको कोई नुकसान ना हो, वो तो वो जो ट्रेकिया है वो हमारी इस तरह की बनी हुई है, स्प्रिंग टाइप की होती है, उसके बारे में पहले भी प्रोग्रामों में मैंने बताया था कि स्प्रिंग टाइप की होती है, और ये कार्टिलेज की होती है, हड्डी की नहीं होती, हड्डी बनने से पहले का जो प्रोसेस है मेम्ब्रेन का उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, कि पूरी हड्डी तो जैसे ये नाक है ना, ये हमारा सामने का नाक, हम हाथ लगा रहे हैं, ये नाक

0: कार्टिलेज का बना हुआ, हड्डी का नहीं। और पीछे आप हाथ लगाते हो ना आंख के नजदीक, तो आप देखते हैं ये हार्ड है, ये हड्डी का बना हुआ, टर्बिनेट जिसको बोलते हैं। तो सामने का जो है ये थोड़ा लचकदार है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया जो बनी हुई है स्प्रिंग टाइप बनी हुई है, और ये कार्टिलेज टाइप की एक इसकी स्ट्रक्चर है कि मूव कर सकती है, आगे पीछे होती रहती है। और ये रखी इसलिए यहाँ कुदरत ने कि इसके नीचे से बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है पास करें, मुख्यमंत्री को गुजरना है तो पूरी सिक्योरिटी कर लो चारों ओर जी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कुदरत ने उसकी बनाई हुई है, और इस सिक्योरिटी से जब ये नाली, मैं फिर दोबारा एक दोहरा दूं कि इस जंक्शन का अंदर का जो स्ट्रक्चर है ट्रेकिया के अंदर की, जिसको प्रोटेक्शन ये कर रहा है ट्रेकिया, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी का गला तो खराब है या गले में इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि वो जा ही नहीं सकती अंदर चीज, तो डॉक्टर लोग यहाँ पर सुराख करके ना फूड पाइप के कनेक्शन करके पाइप यहीं डाल देते हैं। तो ये उस चीज का प्रोटेक्शन का हमारे पास इंडिकेशन है कि ये ट्रेकिया है, यहाँ पर आप सुराख कर सकते हो और फूड पाइप को पहुंच सकते हो या लैरिंग्स को, सांस नली को पहुंच सकते। कई लोगों को देखा होगा जिनको इस तरह की एम्फाइजेमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वहां पर एक विसल सी लगा देते हैं डॉक्टर कि सांस यहीं से आता रहे, नाक की जरूरत ही न पड़े, आपस इस तरह के आजकल के प्रमाण हुए हैं। तो खैर मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई ये एपिग्लोटिस के एरिया की प्रोटेक्शन करती है ट्रेकिया। एपिग्लोटिस का एरिया एक इस तरह की चीज है, इस तरह का जंक्शन है जहां पर फूड पाइप और सांस की नली ये दोनों आकर मिलती हैं। पहले जो नाक की नाली होती है, नाक से निकलती है और पीछे जाती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जा रही है। जब गले में आकर एपिग्लोटिस के एरिया में पहुंचती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है, और फूड पाइप मुंह से शुरू होती है, नीचे फेरिंग्स होगी, और फेरिंग्स जब ये एपिग्लोटिस के एरिया पर यहां पहुंचती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। मतलब फूड पाइप पीछे हो जाती है, सांस वाली नाली आगे हो जाती है, और ये एक जंक्शन बन गया। और इस जंक्शन में कुदरत ने एक ऑटोमेटिक वाल्व लगा दिया। ऑटोमेटिक वाल्व का मतलब ये है कि जब आप सांस ले रहे हो तो उस वक्त उस तरफ का रास्ता खुलेगा, वो वाल्व उधर को जाने देगा उसको, और जब आप खाना खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक सेंस है कि खुराक उधर को जाएगी। कभी कभी हमारी वो नर्व अगर फेल हो जाए, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को बार बार चौकिंग होती, पलच जाते हैं लोग, फिर बहुत जबरदस्त खांसी आती है कि कोई खुराक का हिस्सा या कोई चीज जो है वो सांस वाली नली में चली, इवन पानी पीते हुए कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि पानी सांस वाली नली में हो जाता है, लेकिन वहां जा नहीं सकता, तेरा भी रास्ता ये नहीं है। और फिर जैसे अथरू आने वाली बात होती है, चैकिंग होती है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है अगर फूड वगैरह हिस्सा कोई चला जाए तो। लेकिन वो ऑटोमेटिक वाल्व यहाँ लगा हुआ है जो इनके रास्ते को तब्दील करता है, गाड़ी का कांटा चेंज करता है, तुम इधर को जाना है तुम इधर को जाओगे, ठीक है। तो यहाँ आकर फेफड़ों की नाली आगे हो जाती है, और ऊपर के इसका नाम था लैरिंग्स, एपिग्लोटिस से निकली तो इसका नाम हो गया ब्रोंकस, और फूड पाइप जो ऊपर से आई थी उसका नाम था फेरिंग्स, नीचे जब इससे निकली जाती ग्लोटस से तो इसका नाम हो गया इसोफेगस। तो इनके नाम भी बदल गए और ये आगे निकलनी शुरू हो गई। हम बात फेफड़ों की कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ लैरिंग्स को लेकर ही चलेंगे हम लोग। तो लैरिंग्स जब एपिग्लोटिस से निकली तो इसके नाम बदल गया, ब्रोंकस नाम हो गया इसका। और ब्रोंकस का स्टार्टिंग तो एक है लेकिन आगे दो हिस्सों में बांट गई, दो हिस्सों में बंट गई इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही, प्रोटेक्शन है उसकी, इस ट्रेकिया के अंदर अंदर ही वो दो हिस्सों में बंट गई, और एक राइट फेफड़ों को जाएगी, एक लेफ्ट फेफड़े को जाएगी, उसको राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस हम बोलते हैं। बड़ी आसान सी बात है समझना कि लैरिंग्स के दो हिस्से हो गए, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस, उसका नाम चेंज हो गया लैरिंग्स का, ठीक है। सो उस दाहिने फेफड़े को और बाएं फेफड़े को जाने वाली होगी। अब जब ये जो हाइलम मैंने बताया जो सेंटर वाला जो तो राजमा के अंदर का हिस्सा जो मैंने गर्व किया होता है उस हिस्से की बात कर रहा हूं, वहां से ये फेफड़ों में एंटर करेगी दोनों साइड, वहीं और भी स्ट्रक्चर जा रहे हैं और वो मीडियास्टाइनम में जा रहे हैं, बड़ी प्रोटेक्शन है उनकी, उनके लिए कुदरत ने अलग अपना अरेंजमेंट किया हुआ है, प्रबंध किया सिक्योरिटी का। सो ये दोनों राइट को जाएंगी लेफ्ट को जाएंगी। अब आगे का जो इसका नाम है हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री जब हम बोलते हैं तो एक एकदम हमारे दिमाग में एक नक्शा आ जाता है कि एक ट्री का एक स्टेम होता है, तना होता है, तने के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, टहनियों की सब टहनियां होती हैं, छोटी छोटी टहनी होती है, फिर उसके आगे पत्ते होते हैं, जो लीव्स हैं वो चौड़ी होती है, टहनी तो बिल्कुल पतली होती है, और उसके आगे जो पत्ते निकलते हैं या जहां फूल निकलते हैं फूल भी चौड़े होते हैं और पत्ते भी चौड़े होते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। और ये जो ब्रोंकियल ट्री है हमारा, जब ट्रेकिया से निकला दो हिस्सों में बटा और उसके बाद इसका राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस आ गया नाम, उसके आगे जब ये ब्रांचिंग होना शुरू होता है ना, इधर भी टहनियां फैल रही, राइट फेफड़े में लेफ्ट फेफड़े में जाने शुरू होगी, प्लस राइट साइड में तीन भागों में बांटकर तीन तीन लोब में जाने शुरू होगी, लेफ्ट साइड में दो भागों में बांटकर दोनों चीजों में बांटने शुरू होगी। तो जो ब्रोंकस की वो लेफ्ट साइड में दो हिस्सों में बटी, राइट साइड में तीन हिस्सों में बटी, और फिर वो आगे ब्रांचिंग होनी शुरू होगी, फिर उनकी आगे ब्रांचेस निकलनी शुरू होगी, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई जो है बस हम इस करने के एक दरख्त की बहुत ब्रीक टहनियां हैं इस तरह, लेकिन वो अंदर से खोल है, अंदर से पाइप है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जानी है, अंदर और कुछ नहीं जाना, सॉलिड कोई चीज नहीं जा सकती, ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रोंकाई के अंदर वे ये जो है ब्रांचेस जब होती हैं उसका नाम हो जाता है ब्रोंकियोल्स, छोटी, जैसे आम तो के बोलते हैं एक तो आर्टरी होगी ना, आर्टरी होगी, आर्टरियोल्स होगी ना, आर्टरियोल्स के आगे जो पंजाबी में उसको बोलते हैं रतवाला का क्या, रत सभी समझते हैं, रत क्या है, खून क्या है, रेड, लाल लाल टाइप की कोई भी चीज जब वाल की तरह ब्रीक हो जाए तो उसको हमने रतवाला बोला था, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट है इससे कि हम उसको आर्टरियोल्स बोल दें। अंग्रेजी में समझना थोड़ा ज्यादा आसान है, हमारे हिंदी में समझना बहुत बहुत मुश्किल सी बात है, जैसे मैंने दूसरे प्रोग्रामों में बताया था, अगर हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं तो बड़ी आसान सी बात है, सभी समझ लेते हैं, और अगर हम ये कहें लो पथ गामनी विश्राम ग्रह तो बड़ा मुश्किल है जानना, ये जाय रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह मेडिकल साइंस में जितने भी हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर वर्नाकुलर टाइप के हो गए, ज्यादातर रूटीन, गुड वेरी गुड जी, तो ये आम रूटीन के बहुत सारे लफ्ज हैं, हर एक भाषा ने एक दूसरी भाषा से लफ्ज लिए हैं और वो अपना विरसा और स्ट्रांग करते रहते हैं। और मेडिकल साइंस में तो खास तौर पे ऐसा हुआ है कि मेडिकल साइंस, चाहे हम हिंदी में, चाहे हिंदी वर्षन वाले लोग हैं, चाहे पंजाबी वाले लोग हैं, ज्यादा वर्ड हमारे जो हैं वो अंग्रेजी वाले ही हैं और उनको समझना हमारे लिए आसान है। तो ये मैं उस ब्रोंकियल ट्री की एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रहा हूं कि ट्री की तरह जब बना तो जब उसकी ब्रोंकियोल्स बन गई, छोटी छोटी ब्रांचेस हो गई, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके आगे फिर जैसे पत्ते निकले, तो पत्ते निकलते हैं तो वो टहनी से जो ज्यादा चौड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, तो उसके आगे एक जैसे फुलफला होता है ना, पुखाना होता है ना, बुलबुला जैसे फुलाते हैं हम लोग, वो बुलबुले की तरह आगे स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं उसको, है जी, वो पुकाने की तरह है, वो फैलती है कि जैसे ही बाहर से हवा आई हमने इंस्पिरेट किया, सांस लिया, इतनी ब्रांचों से होता होता होता होता एल्वियोलाई तक पहुंचेगा, वो एल्वियोलाई फूल जाएगी, जब वो फूल जाएगी तो उसके अंदर दो काम होंगे, एक तो ये कि ये एयर आई है, दूसरा ये है अच्छा एक और अंतर है इसमें, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सांस तो हम एक मिनट में 14 से 16 बार लेते हैं नॉर्मली, हार्ट एक मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। मतलब क्या हुआ, हार्ट जो फेफड़ों को खून भेज रहा है वो एक मिनट में 72 से 80 टाइम भेज रहा है। मतलब है कि ये जो एल्वोलाई है इसमें ऑलरेडी हवा आने से पहले खून वहां पर है, और वो खून है जो पूरे शरीर से होकर आया है, उसमें नाइट्रोजिनस कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसेस तो हैं, इसमें गार्बेज और भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम है। अब ये 72-80 बार ये समझ कर लें कि ये जो ट्रैफिक आ रही है 72 ट्रेन आ गई हार्ट से फेफड़ों में और वो एल्वियोलाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 72 से 80 बार एक मिनट में ट्रेन आ गई, इतनी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है जो सामान लेकर आ रही, वो जो खून लेकर आ रही है उसमें गार्बेज है सारा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजिनस गैसेस हैं और भी कुछ है, लेकिन सांस जो है आ रहा वो 14 से 16 बार पर मिनट में आ रहा। तो मैं ये बात कहकर आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि खून ब्लड ऑलरेडी उन एल्वोलाई में एग्जिस्ट करता है, जब ऑक्सीजन आई बाहर से सांस से ऑक्सीजन अंदर गई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भारी है, उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल्की है। तो क्या वैसे वो छोटे छोटे स्कूलों में हम जो पढ़ते थे ना, तो ये साइंस के एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करवाते थे कि जो जो भारी गैसेस है उसका जार था उसको हम नीचे ऊपर रखते थे, और जो हल्की गैस उसको नीचे रखते थे, तो अल्टीमेट देखते थे वो एक्सचेंज हो जाती थी, भारी गैस नीचे आ जाती थी दूसरी ऊपर चली जाती। ठीक वही क्रिया यहां पर होनी शुरू हो जाती है कि बाहर से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन इस ब्रोंकियल ट्री से होते होते ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स तक जाते हुए यहां एल्वोलाइज में पहुंच गई, और एल्वोलाइज में ऑलरेडी ब्लड यहां है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जहां ऑक्सीजन गई ये तो भारी है, एल्वोलाई में जब ऑक्सीजन गई तो ये अंदर बैठ जाएगी उस ब्लड में जो वहां पर भरा हुआ पहले, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर चली जाएगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कुदरत ने अपने आप बनाया है, इसमें कोई बहुत बड़ी कारीगरी वाली समझने वाली बात नहीं है कि कैसे हमारा खून साफ होता है, कैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, कैसे ही है। और ऑक्सीजन बाहर से आई, ये खून वहां पर है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, और ये जो एक और बात है, यहां पर एक बड़ी अजीब बात होती है कि जितनी भी एल्वोलाइज हैं, ये जो पुकाने तरह फूली हुई है जिसमें खून आकर इकट्ठा होता रहता है 72 बार एक मिनट में, उसमें नीचे बहुत थिकनेस होती है क्योंकि बहुत ब्लड नीचे है। जैसे ये हम कहें कि किसी एक ही बर्तन में दो तरह की चीजें, दो रंग नहीं रह सकते, दो तरह का जूस हो तो अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, रेड कलर का जो हरे रंग का कोई जूस आप मिलाएं तो वो एकदम मिक्स मिल जाएंगे आपस में, लेकिन यहां पर एक अचंभे वाली बात होती है कि ऊपर वाला जो होता है वो लाइट उसका डिफरेंट कलर होता है, नीचे वाले का सेपरेट कलर होता है, क्योंकि थिक खून नीचे बैठ जाता है। एक बात आपको शायद याद होगी, मेरे दिमाग में आ गई अभी चलते चलते, मैंने आपको कहा था कि प्लेसेंटा जो है जब बच्चा मां के पेट में होता है ना, तो मां से जो खून आता है वो सीधा बच्चे को नहीं जाता, रास्ते में एक कस्टम डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, तो उस प्लेसेंटा में खून एक तरह इस तरह का कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह का खून रहता है, एक खून जो मां की तरफ से आ रहा है उसमें ऑक्सीजन है और वो भारी है, दूसरी तरफ बच्चे से वापसी होकर खून जो आ रहा है वो भी प्लेसेंटा में मां को वापस जा रहा है और वो हल्का है, वो सेपरेट है। तो मतलब बच्चे से जो आया हुआ खून वो ऊपर रहता है और नीचे से प्लेसेंटा, आपने देखा होगा कभी किसी ने ऑल देखी हो ना, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ऑल देखी हो तो उसके नीचे वो नाली लगी होती है जो हम काटते हैं, नाड़ू काट दिया जी, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो नीचे लगी होती है, और नीचे इसीलिए लगी होती है कि मां की तरफ से आने वाला खून ऑक्सीजन वाला है और ऑक्सीजन भारी है, ये नीचे रहेगी और जो बच्चे से आने वाला खून है वो हल्का है इसलिए ये ऊपर रहेगा। और आप उसको देखेंगे भी तो नीचे वाला पोर्शन जब और बाहर आ जाती है बच्चे के साथ तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो रेड होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो है जहां अम्बिलिकल कॉर्ड लगी है वो नीले नीले रंग का होता है। तो कुदरत का करिश्मा है कि एक ही बर्तन में दो तरह के खून रह रहे हैं। समुन्द्र में भी ऐसा होता है कि वहां का ये नीला समुन्द्र है, वहां का ये हरे रंग का समुन्द्र है, लेकिन समुन्द्र में दीवार तो होती ही नहीं, एक ही पॉट में इस तरह होता है। तो वही बात मैं फेफड़ों की बात आपसे कर रहा हूं कि फेफड़ों में भी ऐसा होता है कि जो खून हार्ट से फेफड़ों में आया, एल्वोलाइज में पहुंचा, वो हल्का है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और बहुत सी गैसें हैं, वो हल्की है, वो ऊपर रहेंगी और ये जो जाएगी और एयर बाहर से ये भारी है और ये सेडिमेंटेट करेगी नीचे। तो नीचे वाला खून जो है उसमें ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इन्वेड करती है और इन्वेड करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बताया था, कुदरत ने हर चीज इस तरह समझे ना, अगर आप हम लोग समझना चाहें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हर चीज को कैसे कैसे कुदरत ने बना दिया ऑटोमेटिक। वो गुरु नानक देव जी की बात मैंने करी थी, कई बार मैं करता हूं कि जो कि छिपाया सो एक बार, उसने जो करना था ना एक बार सब कर दिया है, अपने आप सारा कुछ चले जा रहा है। और ये भी अपने आप करने वाली बात है कि मैं जब सेल की बात कर रहा था ना आपसे, एक सेल है, सेलों से ट्रिलियन सेल्स हैं जिससे बॉडी बनी हुई है। अब सेल किस तरह का किला है जिसकी दीवार तो है और इस दीवार में दरवाजा नहीं है। अब इस सेल में बाहर से खुराक भी जाती है, अंदर से गार्बेज भी बाहर आता है, लेकिन दरवाजा नहीं है। तो अब उसका क्या प्रोसेस है, उसकी मैंने बार बार आप लोगों को एग्जांपल दी। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में उसी तरह वो बैठ जाए कि या हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। आप कपड़े के पोने से आप चाय छानते हो या शिकंजी भी बनाते हो तो वो छानते हो, या कोई भी चीज इस तरह की पानी की बनाई हुई शरबत की उसको छानते हो, तो उसको जितना प्रेशर दोगे ना, जितना ऊपर से प्रेशर दोगे उतना नीचे से वो संघना मादा भी नीचे आ जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर ज्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह ही जो खून सेल में पहुंचता, हरेक सेल की बात करो, उसमें जो आ जाती है ना वो आर्टियोल्स हैं, बाहर से खून सेल में आता है, आर्टियोल्स में प्रेशर है, वो प्रेशर की वजह से आर्टियोल्स का खून सेल की दीवार को इसी तरह प्रेस करके उसके अंदर चला जाता है और जो अंदर का गार्बेज है जिसमें गैसेस हैं वो बाहर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस तरह इस प्रोसेस का जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि कैसे सेल के अंदर दरवाजा तो है नहीं, कैसे सेल के अंदर खून जाता है, खुराक जाती है, कैसे सेल से अंदर से बाहर गार्बेज आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परमीएबिलिटी। तो परमीएबिलिटी के तरीके से ही ये सारा प्रोसेस सारे शरीर में एक एक सेल में खून जाता है, खुराक जाती है, इसी परमीएबिलिटी के तरीके से ही एक सेल से बना हुआ गार्बेज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं फेफड़ों की। अब फेफड़ों के एल्वोलाइज में वो जो पुकाने फूले हुए हैं उनमें हार्ट से खून आता आता आता आता 72 टाइम खून आ गया, उसमें आकर सेडिमेंटेट कर वो फूल गए, वो फूले हुए हैं। और याद करें कि फूलना भी उनका इस तरह है कि वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकें अपनी आंख से नहीं देख सकते, इतने ब्रीक हैं, फूल जाते हैं। 72 बार एक ट्रेन आई, उसने अपने पैसेंजर वहां उड़ाल दिए, बावजूद इसके भी वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक है। तो क्या हुआ, वो उसमें चले एल्वोलाई में वो चले गया, वो खून बैठा हुआ, पहले बाहर से ऑक्सीजन आई तो उस ऑक्सीजन के जो वो भारी है, उस ऑक्सीजन का जो है मॉलिकुलर वेट ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से, तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रह जाती है, वो चीजें ऊपर आ जाती हैं, जो सॉलिड ब्लड होता है वो नीचे रह जाता है। अच्छा एक याद, इस ब्लड में और गार्बेज भी है, ये जो ब्लड फेफड़ों से हार्ट से होकर फेफड़ों में आया है ना, अकेला गैसियस गार्बेज नहीं है, और गार्बेज भी है, मैं उसकी बारे में आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड हल्की है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन भारी है वो नीचे बैठ जाती है और नीचे ऑलरेडी ब्लड है और उस ब्लड में ट्रेन के खाली डब्बे हैं। मैंने आपको बहुत बार कहा कि जितने भी ब्लड के सेल है ना, उनमें कुछ सेल तो हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल कहने से मेरा मतलब ये है कि उसका अपना अंदर भरा हुआ है, उसका उसको लिविंग सेल बोलते हैं हम लोग, जो अपने आप अपनी जिंदगी आगे आगे कर सकते हैं। सो वो उनको हम न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, ये सारे सेल जो हैं ये न्यूक्लिएटेड सेल हैं, मतलब इसके अंदर खाली जगह नहीं है, इसके अंदर अपना मटीरियल है भाई। लेकिन जो आरबीसीज हैं जिसको हम रेड ब्लड कहते हैं, लाल खून के कण जिसको हम बोलते हैं, ये बेचारे खाली डिब्बे हैं, ये अंदर इसके कुछ नहीं, बाहर बाहर दीवार ही है, खाली डिब्बे हैं, और जो ऑक्सीजन आई थी नीचे वो इसमें भर जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये खाली हैं, और भरती कैसे है, क्योंकि इनका अपना मेम्ब्रेन है, इनका को ये भी तो सेल है ना, तो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो भारी, वो जबरदस्ती इसके अंदर घुस जाती है, वो ये ट्रेन के डिब्बे भर जाती है, उसके बाद इनको वापस जाना है, और वापस जाने के लिए नीचे वाले पोर्शन से जो निकलती हैं लाइनें जिनको हम बोलते हैं वेन्स, और उसकी जगह वेन्स जो है वो बाई तरफ हार्ट को खून लेकर जाती, आने वाली थी एक पल्मोनरी आर्टरी, वो गार्बेज लेकर आ रही थी, दो भागों में बटकर दोनों फेफड़ों को उसने बांट दिया, दोनों फेफड़ों से फिर दो दो नालियां, कि भाई जितना तो कि 72-80 बार चला है बेचारा, तो जितना ज्यादा खून है साफ हो गया है, इसको फटाफट पहुंचा दीजिए फैक्ट्री में, जितना सामान तैयार हो गया इसको फटाफट मार्केट में भेजें। तो कुदरत ने चार वेन लगा दी, कि चार वेन जो है दो राइट फेफड़े से दो लेफ्ट फेफड़े से फटाफट हार्ट के बाई तरफ लेफ्ट एट्रियम में वो भेजना शुरू कर देती। तो खैर वो हार्ट की बात है, मैं केवल आज फेफड़ों तक सीमित हूं, तो फेफड़ों की बात मैं ये कर रहा हूं कि इस प्रोसेस से ये जो हमारी एल्वोलाई है इनमें एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो एक्सचेंज प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक इसमें आनी शुरू हो जाती है, लेकिन क्योंकि 72 बार खून आता है या 80 बार आता है या किसी का ज्यादा भी आता होगा, पल्पिटेशन होता है या प्रॉब्लम होती है, तो खून ज्यादा आ जाता है कई बार फेफड़ों के, डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप को बुलाकर हम जो देखते हैं ना, तो यही चीज देखते हैं कि कोई चीज ज्यादा आ गई है तो हवा को जाने में दिक्कत होगी ना, उसकी अलग अलग आवाजें हैं जो हमारे कानों में फिक्स है, जैसे वो कोई अच्छा शिकारी होता है ना, तो बाहर जाए वो शिकार करने तो कोई जानवर बोलता है, बोलता है ये पटेरा बोल रहा है, ये तीतर की आवाज आ रही है, ये इसकी आवाज है, वो जानवरों की आवाजें उसके दिमाग में फिट हो जाती, ये बोल रहा है। इसी तरह हम लोग डॉक्टरों के दिमाग में ये चीजें फिट होती है कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है, अगर किसी को निमोनिया हो गया तो कैसी आवाज आएगी, वो हमारे कानों में फिट है। तो जितनी भी बीमारियां इस तरह की होती हैं उनकी आवाजें अलग अलग हमारे कानों में फिक्स है दिमाग में, तो हम ये उसकी आवाज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रोसेस से एक्सचेंज का प्रोसेस गैसों का चलता रहता है, बाकी जो गार्बेज है ना, यहां से गैसों का गार्बेज एक्सचेंज हुआ है और आगे ये खून हार्ट में गया, हार्ट ने फिर खून पूरे शरीर को दिया, पूरे शरीर में चलते चलते अलग अलग सेंटर हैं, अलग अलग जैसे किसी ने थाने बनाए होते हैं ना, ये सीए स्टाफ है, ये स्टाफ है, वो है, अलग अलग चीजें उन्होंने बना दी हैं। तो आगे जब ये खून चलता चलता, इसमें ऑक्सीजन तो है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए उनको, जैसे बाजार में आता है ना कोई रेडी वाला, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है और उसके पास तो सभी सब्जियां हैं, मेरी जो जरूरत है, मैंने कद्दू खरीदने तो कद्दू लूंगा, मैंने भिंडी खरीदनी तो मैं भिंडी लूंगा, बाकी सब तो चलता रहेगा। तो फेफड़ों ने ऑक्सीजन लेनी थी वो ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। आगे ये खून गया हार्ट ने, फिर इसको पूरे शरीर में भेज दिया। पूरे शरीर में भेजते ये खून चलते चलते चलते चलते पहुंच गया किडनी में, कुछ हिस्सा किडनी में पहुंच गया। तो किडनी ने ये सोचा कि ना भाई, खून में इतना सोडियम चाहिए, इतना पोटेशियम चाहिए, इतना ये चाहिए, इसमें तो बहुत ज्यादा आ गया है। ये तो बंदा लून बहुत खाता है, ये तो बंदा ये इस तरह की खुराक बहुत खाता है, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं, इसके ये तो एल्ब्यूमिन फैटी चीजें बहुत ज्यादा खाता है। तो वो क्या करेगी कि भाई मेरे पास ये छानना लगा हुआ है, मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, इसमें जो जो चाहिए शरीर को मैं वो जाने दूंगा, बाकी चीज नहीं जाने दूंगा, ये मेरा कस्टम डिपार्टमेंट है, बाहर के देश से ये चीज नहीं आ सकती। तो वो चीज वापसी खून में फिर भेज देगी किडनी, जो दूसरी चीज है उसको पानी में मिक्स करके पेशाब से बाहर निकाल देगी। अब गार्बेज तो फिर भी बच गया, और भी गार्बेज बच गया, वो फिर खून जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, और सर्कुलेट करते करते वो फिर पहुंच जाता है चमड़ी के पास। चमड़ी जो है हमारी, वैसे तो बाहर से लगता है कि ये तो बंद है पूरी तरह, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें मुसाम हैं, और वो मुसाम जो हैं वो परमीएबिलिटी के हिसाब से खुलते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। बाहर ठंड हो तो पेशाब ज्यादा आता है, कोई यहां पसीना नहीं निकल सकता, मुसाम बंद है। गर्मी है तो ये मुसाम फैलते हैं, अंदर से प्रेशर ज्यादा होता है, ये फैलते हैं, पसीना बाहर आता है, पेशाब काम आना शुरू हो जाता है। तो कुदरत ने ये बना, तो खैर ये ब्लड जो बाकी है, किडनी से भी हो गया, फेफड़ों से भी हो गया, जो जो जहां जहां कार्रवाई होनी थी सफाई की हो गई, और उसके बाद ये स्किन के पास पहुंचा था, तो स्किन ने कहा कि ठीक है भाई, ये जितना गार्बेज बाकी है ना, इसका मैं संभाला करती हूं। और स्किन के अंदर कुदरत ने एक स्पेशल टाइप का टोका लगाया हुआ, टोका मशीन है, चारा कुतरते हैं हम, छोटा ब्रिक ब्रिक करते हैं उसको पशुओं की सही है, तो इसी तरह का उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। वो जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है ना, क्योंकि तो सारा गार्बेज तो खून में मिक्स होकर आ रहा है, वो सारा तो इतना ब्रीक नहीं है कि चमड़ी के मसामों से बाहर आ जाए, इसलिए वो उसको ब्रीक करता है, और ब्रीक करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, तो फिर पसीने से वो बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोगों को आपने देखा खारिश होती है ना, भाई खारिश का मैकेनिज्म क्या है, तो कभी इधर खारिश होगी, कभी उधर खारिश होगी, क्या है मतलब? मतलब ये है कि वो जो गार्बेज आ गया आपने जो खाया था, वो पूरी तरह टट्टी से पेशाब से निकला नहीं है, रह गया है, वो स्किन तक पहुंचा है, और वो जो चीजें आपने खाई हैं वो शरीर को नहीं चाहिए, शरीर बर्दाश्त नहीं करता, वो गार्बेज के लिए हरेक सेल ने बाहर निकाल दी है, और खून में जाते जाते चमड़ी में पहुंच गई है। अब चमड़ी बोलती है कि भाई ये तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, पूरे शरीर को कवर करता है, इतना बड़ा ऑर्गन तो कोई और है ही नहीं, अब मेरे से तो कोई गार्बेज बचना नहीं चाहिए, मैं तो सभी निकालना है, मेरी जिम्मेवारी। तो वो जो गार्बेज स्थित होता है, केमिकल टाइप का होता है, वो नहीं निकलता, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमें इरिटेशन होती है, हम खारिश करते हैं, ताकि इससे वो जो मुसाम है वो डायलेट हो जाएं और वो बाहर निकल जाएं। तो खारिश करते करते कई बार वो छिला भी जाता है, खून भी आ जाता है, और कई बार वो उसमें से मुआद निकलता है, उसको हम रेक्ट एक्जिमा बोलते हैं, उलझेंग एक्जिमा बोलते हैं, कई बार निकलता कुछ नहीं लेकिन खारिश ड्राई हो रही है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो कम है लेकिन केमिकल्स की मात्रा ज्यादा है, खारिश हो सकता इसलिए हो रही है। तो मतलब खारिश का एक्सप्लेनेशन ये है। हम फिर आ रहे हैं अपने उस फेफड़े की तरफ ही, तो फेफड़े के अंदर का जो ट्री था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रोंकस का जो ट्री है वो इस तरह काम करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसमें बाहर आ जाती है, या और भी जितनी नाइट्रोजन गैसेस में बनती हैं उनको वो बाहर निकालना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से, मान लीजिए जैसे आप पहाड़ी में चले गए, वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, पर जरूरत है ना शरीर की, हम कुदरत ने नियम फिक्स किया है कि 14 से 16 बार अगर एक आदमी सांस लेता है तो जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो फिर हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है, या हम तेज तेज दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो अभी हम तेज तेज सांस लेते हैं, इसीलिए लेते हैं के अंदर की डिमांड पूरी करनी है, सप्लाई पूरी करनी है, इसलिए हमारा सांस तेज तेज चलता है। अब इसने ऑक्सीजन ले रही तो हार्ट को ऑफ ग्राउंड मुसीबत हो गई कि भाई इसको आगे सप्लाई भी करना, हार्ट का डिपू है ना बेचारा, है चीनी का डिपू है, बाहर से सामान आया है, इनको आगे सप्लाई करना है, ये रख भी नहीं सकता, तो इसलिए हार्ट भी उतना तेज तेज चलना शुरू हो जाता है। हम दौड़ते हैं तो हार्ट भी इतना तेज तेज चलता है, हाइट पे जाते हैं सांस फूलता है तो हार्ट भी बहुत तेज तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वो पूरी उसकी कर रहा होता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन था हमारे फेफड़ों का था। उसके बाद फंक्शन के बारे में तो आप सब समझते हैं कि इसका फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन के बिना कोई सेल जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इस तरह का काम करती है, अगर चूल्हे में हमने लकड़ी रख दी लेकिन ऊपर दाल सब्जी भी रख दी, लेकिन हमारे पास माचिस ही नहीं है, आग नहीं बलेगी, कुछ नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन, अब वैसे भी अगर चूल्हे में आग नहीं जलती तो हम फूंक मारते हैं ना, फूंक मारने का मतलब क्या होता है, आग को जलाना। और ये जो हवा है, ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर के अंदर इस तरह का काम करती है कि आग पैदा होती और जिससे हमारे शरीर का पूरा चलन जो है वो चलना शुरू हो जाता है। कभी आगे किसी प्रोग्राम हुआ तो मैं ये भी आप बताऊंगा कि भाई इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे आग बढ़ती है, ये कैसे होता है कि ऑक्सीजन से सारा शरीर काम करने शुरू कर देता है, जो ऑक्सीजन नहीं है तो पता मुर्दा हो जाता है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि ये कैसे कैसे होता है। मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है, पर हाल है बाकी बहुत कुछ मुझे कहने वाला है, जैसे वेट है, अलग अलग फेफड़ों का अलग अलग वेट है, नीचे का जो डोम है उसकी कैसी कैसी बनतर है, उसमें क्या क्या है, और उसमें अगर कोई अंतर आ जाता है तो हमारे पास क्या क्या निशानियां बाहर आएंगी। अभी तो बहुत सी बीमारियां हैं इसकी, फेफड़ों में क्या क्या होता है, जैसे दमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, निमोनिया होता है, सीओपीडी होता है, पता नहीं कितनी बीमारियां, जितनी जितनी मुझे याद आती जाएंगी मैं आप सब लोगों को बताता जाऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे फर्क होता है। इसको हम दमा क्यों बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस क्यों नहीं बोलते, ब्रोंकाइटिस ही क्यों बोलते, निमोनिया क्यों नहीं बोलते, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अगले प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। और फिर बताऊंगा कि भाई अगर इस सारे ताने बाने में कोई नुक्स हो जाए तो डॉक्टर तो देख लेंगे, आम आदमी क्या देखेगा। कुछ ऐसी बातें होंगी जब इस तरह के वकार फेफड़ों में पैदा हो जाएंगे तो कुछ निशानियां बाहर आएंगी जो आम आदमी देखकर पहचान सकता है कि इसके यहां पर नुक्स है भाई, ताकि वो कंसर्न डॉक्टर के पास उसको ले जाए सीधा और सीधा उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाए। या बहुत सी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आप घर पर भी बहुत सी चीजों का उपचार कर सकते हैं ताकि सीरियस होने से पहले पहले आप उसको कुछ सहूलियत दे सके, कुछ बचा सके, और डॉक्टर के पास जाए, ऐसा ना हो कि डॉक्टर बोले ओ जी आपने तो देर कर दी लाने के लिए। सो बहुत सी चीजें इन प्रोग्रामों में मैं आपके साथ हमेशा साझी करता रहता हूं, और अब फेफड़ों की बात आई है तो वो भी मैं बातें आपके साथ साझी करूंगा कि कौन सी निशानियां बाहर आएंगी अगर इसमें ये पूरे सर्कल है, अगर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो, अगर प्लूरा में कोई नुक्स हो गया है तो, अगर किसी लोब में नुक्स हो गया है तो, अगर हवा यहां रुक गई बाहर आ ही नहीं रही फेफड़ों से जिसको बाहर आना चाहिए, तो ये सब क्या होता है, कैसे होता है, और उसकी निशानियां क्या होंगी जो बाहर आएंगी, जो बाहर आप देख सकते हैं, इसका वेरवा मैं अगले प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 95468, फोन नंबर 4086871899, ईमेल एड्रेस homeomedicine@yahoo.com homeomedicine@yahoo.com। किसी भी वक्त किसी बीमारी के संबंध में पूछना चाहते हैं, कोई शंका है, ट्रीटमेंट कहीं से भी आप करवा रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, तो जो नेचर के प्रोसेस है जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं, मेरे 52 इयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इसमें से 26 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया, अब जब से अमेरिका में हूं 30 साल 32 साल हो गए, तब से भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एवरी डे पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो नॉलेज इकट्ठा किया हुआ उसके हिसाब से रुकावट कहाँ हो सकती वो मैं आप सब लोगों को बता सकता हूँ, ताकि आपका इलाज हो सके, आप जल्दी सेहतयाब हो सके। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब। थैंक यू,
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। मिलते हैं पास में फिर, देव जी, सत श्री अकाल,
0: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।

होंगे, ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी, ऐसा हो जी। तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं तो लेट्स टेक, उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का, तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसको इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, मिसमेराइज करते, क्योंकि मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पे सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे, और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट था, क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रांग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है ये साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से चाहे हिप्नोटिज्म से, तो हम बहुत सी बीमारियां जो इसकी वजह से पैदा हुई हैं, इसमें आए हुए वकार की वजह से पैदा हुई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए ही हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। होम्योपैथिक तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, जो स्टेबल फिजिकल तक अपना लेवल रखती है, उस तक अगर करते हैं तो फिर हम सेल तक रह जाते हैं। और उसकी परिभाषा भी मैंने आप सब लोगों को पहुंचा दी थी कि भाई ये एक लेवल है, लेकिन इस लेवल के लिए पाव सेल में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जिसको हम आगे पैथोलॉजी बोलते हैं, इन सब चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर वाइटल पावर की है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप सबके सामने रखी थी कि जितने भी डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं, मान लिया जाए टीबी के वार्ड में काम करते हैं, सभी को टीबी तो नहीं हो जाती, जितनी भी नर्सें हैं सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। या मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी ये कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो था सभी को तो नहीं हुआ, सभी ने वैक्सीन प्रोटेक्शन भी नहीं ली, सभी मर तो नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त, कोविड-19 जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह ही बहुत सी चीजों, जब जितनी बीमारी, इवन इन्फ्लुएंजा भी जब महामारी के तौर पे आया था, तो उस वक्त हजारों लोग कोविड की तरह मर गए थे इसी तरह। और ऐसा ऐसा कोई भी बीमारी अगर आती है हमारी खुद की जीवन, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, तब भी उनको बीमारियां होती थी, बेशक बहुत सारे लोग मर जाते थे, रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए साथ में कि बहुत से लोग बच गए थे, बच जाते हैं, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, उनकी जनरेशन हम आगे चल रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये सब चीजें साबित करती हैं कि फिजिकल से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर की हर एक्टिविटी, चाहे तंदुरुस्ती की हो चाहे बीमारी की हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है। और इसी तरह ही दूसरा फेज इस चीज का, ये एक फेज मैंने आपको सब बता दिया कि बीमारी या तंदुरुस्ती इस शरीर की, बेशक मटीरियलिस्टिक होते हुए हम लोग सिर्फ टिश्यू चेंज देखते हैं, हम लोग सब सेल में आई हुई चेंजेस ही देखते हैं, लेकिन इस आई हुई सभी चेंजेस के लिए, सबसे छोटी बात तो सेल है ना, सेल में चेंजेस देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी कौन है, वाइटलिटी है। और उसका दूसरा पक, दूसरा फेज मैंने आपके सामने रखा था दवाइयों के बारे में। हमारे पास सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बीमार आ गया उसको हम दवाई देते हैं। अब जो

0: दवाई देते हैं तो दवाई देने के पीछे अगर हम बारीकी से खोज करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि दवाई के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि हम दवाई कहते किसको हैं। अब बाजार में कोई चीज आप ले आए तो वो सब्सटेंस है, वेजिटेबल समझ लो। मैंने ग्रुप बताए थे आप सब लोगों को कि भाई अभी हम लोगों ने जो कुदरत ने दिया हुआ हमारा भंडार है ना दवाइयों का, जिसे हम दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे किसी भी साइंस वाले जो दवाइयां बनाते हैं उनके ग्रुप हैं, जितने भी वनस्पति से दवाइयां बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेजिटेबल ग्रुप, और जितने भी मिनरल्स हैं इस ब्रह्मांड में उनसे हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको हम मिनरल किंगडम बोलते हैं। इसी तरह ही शरीर के जो लिविंग सिक्रीशंस हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशन तो वो है जो बॉडी के अंदर से तंदुरुस्त हेल्दी तंदुरुस्त टिश्यू से निकलता है, एक्सक्रीशन वो है जो वेस्ट के तौर पे शरीर से निकाला जाता है, जैसे पेशाब वगैरह हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह अंदर के जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है और अलग अलग हार्मोन है, इस तरह के अलग अलग सिक्रीशन है जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, और जो लिविंग बींग से दवाइयां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सारकोड्स, और जो बीमार चीजें हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन से जैसे स्प्यूटम है, ट्यूबरकुलोसिस की स्प्यूटम है और इस सब से भी अभी चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं नोजोल्स। इसी तरह बीमारियों, इसके अलावा भी एक मैंने ग्रुप आपको बताया था जो अभी ह्यूमन बीइंग की जानकारी में जिसको हम बोलते थे इम्पाउंडेरा भी दिया, उसे भी हम दवाइयां बुलाते हैं। शक्ति जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं, इसीलिए उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा भी दिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, अवेज तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिल बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटीरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझता है, कोर्स सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जांपल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात ये है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है, अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, इससे दवाई बनती है, और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है, जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी। उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं, और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम, वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फार्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है, उसे पैसे दी मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर बढ़ जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना, किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीम या कोस्ट के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटीरियल कोस्ट की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे है। बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाई है कबल हो गई है, अफीम खाई है एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त लफ्ज होगा, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सबके सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड ये भी चीज वाइट है, सभी चीजें तो वाइट है, फटकरी है वो वाइट है, और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना लो चून का मिश्रण लगा के करो जी कैसे करोगे, हाँ जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करेंगे। तो अल्टीमेट जो साइंस है ना मेडिकल कली साइंस ने ये इसका निष्कर्ष निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीका कार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा फिर पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसी ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही बेहतर है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी की अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है, तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकरी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह गोरक्ष नहीं करेगा, ये अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल। किसी भी चीज की वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटीरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस होगी, अब तो कब्ज हो गई। इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं, फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया, अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा मींस सिम्टम्स हाउ इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है, अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन बींग करेंगे तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में। अलग मैं सवाल और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन का आप सारे सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम है वो तो सभी में एक तरह के आएंगे लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट है फीलिंग डिजायर अवर्शन कुनीन खाने के बाद वो सबका वक्रा अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया, इतना बड़ा कोड़ा हो गया, ये कैसे करेगा, कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीज है जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी तो हम लोग हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इसको फेंको, पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है जो डाइवर्टेड है जो चीज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी, उस हायर लेवल को अगर आप समझ के चीज करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूं मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है, क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंटर है, हर बंदा नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। सो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है, ट्यूबर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को इरेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है, इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो वो उसे नहीं ना मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी, लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए कुछ ऐसा हो गया तो इसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिकेशन बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी, अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाएं तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पल दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए, जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं? कि हमने उसके एशेंस की मैच की। क्या दे रहे हैं हम? हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे, ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले भी, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया। तो क्या हो गया? मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ही ना दे हमें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल कैरेक्टर कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं, और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना जिससे हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं, और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र समय नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समय नहीं देता या तकलीफ इतना समय नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला ठीक कर देते हैं। तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा, और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है। उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस वाइटलिटी से है। क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम, कि आपकी मेंटल सिक्योरिटी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी नहीं, आप पेट दर्द कह रहे थे, आप रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपके मेंटल सिम्टम की आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया। ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और वही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया, वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। तो वाइब्रेशन इस तरह भी होती है। तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते, तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे, पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मींस जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखाना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटिलिटी पे हुआ लोड, इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी बेशक उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शरीर के इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है, और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं, मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है, जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की पावर बराबर है, ये तो वो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनीन ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनीन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनीन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उससे पे मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें हर बीमारी में, ये ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा, क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है। अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा टेम्परेरी सफाइस करने। हाँ ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पर ज्यादा तकलीफ दे तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक। सबस्टांस वही है जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है, लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं। अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मैं मॉर्फिन पैसे भी निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है, और अगर मॉर्फिन पैथेडीन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसी करते हैं। और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा। अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ ही सिम्टम्स से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इन टू कॉन्सिडरेशन टू डायग्नोज डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधू आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किसी बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो, तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 408-687-1899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये बात आप लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रवास में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 to 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पड़ता है, हम फिजिकल की बात करेंगे। वो जो इंडिविजुअल बात जो मैंने आज की है ना, वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है, लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल, तो वो बात मैंने बहुत बार कर दी आपके सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे उस इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की, वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने। जो नब्ज देखकर ही बता देते थे कि तेरे तो फिरनी में नुक्स है, तेरे तो फलाने जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शन की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। सो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं तो जरूर उठाए। रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, सत श्री अकाल।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गल्ला जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी,
0: शुक्रिया,
2: थैंक यू चीमा साहब
1: जी, डॉक्टर साहब थैंक यू,
0: थैंक यू जी, मेहरबानी,
2: थैंक यू दोस्तों, ताडा भी श्रोते हो जेडे प्यार ना सुन दे हो, बड़ी मेहरबानी, फिर अगले प्रोग्राम तक मिलते हैं जी, सत श्री अकाल।

0: ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਆ ਚਾਹੇ ਲੀਗਲ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈ ਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਰਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ
1: ਤੇ
0: ਖ਼ਬਰ
1: ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
2: ਜੀ
1: ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਖਾਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
0: ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕੋਡੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਡੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੋਨੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
2: ਥੋੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਜਾ ਸੋ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ
0: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਓ।
0: ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ।
2: ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫਟ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
0: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਖੁਚੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ
2: ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਸਖਤ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
0: ਹਾਂਜੀ
2: ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫਟ ਦਲੀਆ ਦੁਲੀਆ ਖਿਚੜੀ ਖੁਚੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ।
0: ਮੈਂ
2: ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ ਏਡੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਡੇਢ ਕੁ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਬਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ।
2: ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਓਗੇ ਆਈਡੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਖੱਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫੌਜੀ ਬਾਕੀ ਮੋਹਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੂਗੀ 17 ਤੋਂ 45। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਭਈ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
1: ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮੈਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਹਾਂਜੀ।
1: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
0: ਜੀ।
3: ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਹਵਾ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
0: ਹਾਂਜੀ,
3: ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੰਨੇ ਗੁੰਨੇ ਚੂਬਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ
0: ਹਾਂਜੀ,
3: ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਫਿਰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਆ। 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਸਾਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮਾ ਧਰਮਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ।
0: ਹਾਂਜੀ,
3: ਬੁੱਧ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ
0: ਐਸਾ
3: ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਨ ਵੱਧ ਗਈ ਆ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਕੁੜੱਤਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
3: ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਹਮ ਲੋਕ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂਗੇ ਜੀਵਨ ਸੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਮੇ, ਵੋ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਹੋਗਾ। ਸੋਰੀ, ਮੈਨੇ ਆਪਕਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਹਮ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਚਲਾ, ਕੈਵੇ ਬੜਤਾ ਆਇਆ, ਕਬ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਯੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਹਮ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਕਾ ਜੋ ਅੰਗ ਹੈ ਉਸਕਾ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਵੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਛਾਤੀ ਕਾ। ਸਿਰ ਕੈਸੇ ਛਾਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਹੈ ਹਮਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਡੈਟ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋ ਹਮਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏ ਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਉਪਰ ਕੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਉਪਰ ਸੇ ਨੀਚੇ ਕੋ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੇ ਅਬ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ ਇਸਮੇ ਟੈਸਟ ਮੇ, ਔਰ ਨੈਕ ਕੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਤੇ ਥੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਇਸਮੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਥੇ ਵੋ ਸਭ ਮੈਨੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾ ਦੀਏ ਥੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਨਮੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੇ ਯੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਥੀ ਕਿ ਜਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਪੜਤੇ ਥੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੀਰ ਮੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਡਾਲ ਕਰ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕਾ ਕਾਮ ਚਲਤਾ ਥਾ। ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੇ ਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਮ ਥੀ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਥੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਯਾਮ ਜਬ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਮੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਠੀਕ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਫਿਸ ਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਿਲਨੇ ਜੁਲਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇ ਜੁੜ ਕਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਆਬੋ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਾ ਬਿਮਾਰੀਓ ਕਾ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਵੋ ਅਬ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਤੀ ਥੀ, ਅਬ ਵੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਆ ਵੋ ਜੋ ਨੇਚਰ ਕਾ ਰੂਲ ਥਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲੋ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਕੀਏ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੋਨ ਕਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਵ ਕਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਕਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਨਕੀ ਜੋ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਮੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਲੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ 3 ਔਰ 7 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਕੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ 3 ਔਰ 7 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮੇ ਢੂੰਢਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਐਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਸਮੇਂ ਮੇ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। ਔਰ ਵੋ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਅਬ ਤੋ ਹਮ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ ਹਮਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇ, ਹਮਾਰੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੇ, ਹਮਾਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਮੇ, हर एक तरह में एडल्ट्रेशन हो गई है, इसलिए बीमारियां आराम से ठीक नहीं होती। दूसरी बात, वहां उस वक्त हमें ये ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि शरीर के अंदर क्या घटित हो तो बाहर क्या दिखाई देगा, लेकिन अब क्योंकि एडल्ट्रेशन बहुत हो गई है और हमें ये जानने की जरूरत आ गई है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट हुई, मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट के साथ हम लोग यहाँ पर पहुंचे कि नहीं भाई हमें यहाँ खोज करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि इस शरीर के अंदर तो हम ये कुआं है, इसमें जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो ना तो एक्सरे था ना और रेडिएशन की और सब चीजें थी, कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं था ऐसे क्या, और ऐसे बाहर ही देख रहे थे। सो बाहर अंदर की जितनी भी चेंजेस होती हैं उसकी निशानियां पैदा होती ही है, और वो जब हमने जो उस वक्त के थे सियाने लोग उन्होंने देखना शुरू किया तो बहुत सी चीजें उनको पता चली कि अंदर किस तरह की चेंजेस हों तो बाहर क्या हो जाता है, किस किस अंग में क्या क्या हो तो क्या हो जाता है, वो सब जो क्या हो जाता है उन्होंने आस्ता आस्ता जब लैंग्वेज आई, जब भाषा आई, लफ्ज बने तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहले इसके बाद रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया तो जनरेशन टू जनरेशन वो हमारे तक आगे पहुंचना शुरू हो गया कि भाई शरीर में किस किस तरह की चेंजेस हो अंदर और बाहर उसकी क्या निशानियां देंगी। वही चीजें लेकर ये चैप्टर मैंने आपके सामने रखना शुरू किया कि भाई अगर सिर के अंदर, पता है बहुत बार हम लोगों ने बात की है कि सिर के अंदर बहुत से अंग, एक गांव बसा हुआ पूरे का पूरा, और किस किस अंग में क्या क्या नुक्स हो वो अलग की बात है, फिर हम बीमारियां की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर सिर में कोई नुक्स हो जाता है तो उस नुक्स की बाहर निशानियां ओवर आर जनरल तौर पे क्या पैदा होंगी, तो वो हमने नोट करने शुरू की। और इसी के हिसाब से ही हमने सिर की बातें आपको बताई थी, इसी के हिसाब से ही ये जानते हुए कि भाई हमारे पास अब एक्सरे नहीं है जी, हमारे पास अब इस तरह की कोई चीज नहीं है जो हम अंदर देख पाए, अब हम अंदर देख पाते हैं, बहुत कुछ पता है, लेकिन ये भी साथ में कहना पड़ेगा कि बहुत सी चीजें जो हम अंदर देखते हैं जिसको हम पैथोलॉजिकल चेंज बोलते हैं वो बहुत लंबे समय बाद अपीयर होती है, बहुत लंबे समय बाद हमें पता चलता है कि भाई इसमें ये खराबी हो गई है, और उस वक्त तक बीमारी बहुत लंबा सफर करके आ गई होती है, उस वक्त उसको कंट्रोल करना या ठीक करना भी इतना आसान नहीं होता, लंबा हो जाता है। लेकिन ये बात हम लोगों ने जान ली कि कोई भी छोटी मोटी सी भी घटना कहीं पर भी होती है शरीर के अंदर, और उसका इफेक्ट जो है बाहरी शरीर के ऊपर हमें दिखाई जरूर देता है, ये बात हम लोगों ने अब तक तय कर दी। और उसके बारे में मैंने आप सब लोगों को एग्जांपल्स, दो एग्जांपल पहले पंजाबी के प्रोग्राम में दी थी आपके रेडियो पर भी, कि हम लोग यहाँ डायल करते हैं नंबर और उसी वक्त हमारा कोई बहन भाई इंडिया में फोन उठा लेता है, इस एनवायरमेंट में इस तरह का कोई गैप नहीं है जिसकी वजह से वो सारे का सारा चलन हमें पता चल जाता है कि वो क्लिक वहां पर हो गया है, इसके पीछे की साइंस वो अलग है उसके, और उसको आसान बनाने के लिए मैंने ये कहा था कि आप एक पाउंड एक तालाब के किनारे पे पड़े हो और आपने एक कंकर उठाकर उसमें फेंक दिया और आप देखेंगे कि लहरें बन रही हैं, लहरें कुछ दूर तक तो आपको दिखाई देंगे लेकिन उसके बाद आपको दिखाई नहीं देंगे, इसका ये नहीं है कि दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब लहरें नहीं बन रही, नहीं, अब हम ये जानने के काबिल हो गए हैं कि अगर हम अपना हाथ भी उस पौंड के उस तालाब के दूसरे किनारे के हिस्से में पानी में डालेंगे तो हमारा हाथ जो है एक तरह का सेंसेशन फील करेगा जिसको हम लहरें बोलते हैं, ये लहरें आ रही हैं, ये लहरें किसी न किसी चीज के उस पानी में एंटर होने की वजह से पैदा हो रही थी। तो इसी तरह इस शरीर में भी इस तरह की कोई चीज नहीं है कि जिसको हम बोले वो खाली है, इवन हमारी जो फूड पाइप है, फूड पाइप भी ऐसे नहीं कि खुली पड़ी है, जैसे हम किसी आटा पिसाने के लिए जाते हैं तो उसमें हम डाल देते हैं वो खाली पड़ा हुआ है और उसके बाद नीचे आनी शुरू होती है कण, नीचे आटा बनना शुरू हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा पूरे का पूरा शरीर अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जैसे फेरिंग्स है, जैसे ईसोफेगस है, जैसे स्टोमिक है, जैसे इंटेस्टाइन है, ये पूरी तरह फ्लेक्स होकर तय की हुई है। और इसी की वजह से ही जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मोशन जिसको हम बोलते हैं आंतरियों की मूवमेंट, ये जो पेरिस्टाल्टिक मोशंस हैं, जब ऊपर से खुराक आती है, प्रेशर पड़ता है और नीचे की चीज खुलनी शुरू हो जाती है, एक लहरें बननी शुरू हो जाती है, एक उसी तरह तालाब वाली बात होनी शुरू हो जाती है और इसका सेंसेशन जो है अप टू एंड होता है अगर हम महसूस करना चाहें तो। लेकिन हाँ, आज आजकल हमारे पास डिवाइसेज आ गई जिसकी वजह से हम जान लेते हैं, लेकिन हम उससे पहले, क्योंकि डिवाइसेज हैं तो हॉस्पिटल में है ना, डिवाइसेज हैं तो डॉक्टर के पास है ना, तो डॉक्टर के पास भी जाने से पहले हमें ऐसा पता होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इसको हो क्या रहा है, किस डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि आज डॉक्टर तो एक एक सिस्टम का अलग है, सिस्टम नहीं बल्कि एक एक अंग का अलग है, इसलिए ताकि उसके हिसाब से जल्दी हम उसकी राहत पहुंचा सके। इसलिए सूटेबली जो डॉक्टर जो इस चीज का जानकार है उसके पास ले जाने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके बारे में जानते हों, नहीं तो फिर हॉस्पिटल में जाएगा, वहां वो शनाख्त करेंगे, फिर वो ट्रांसफर करेंगे, इट मे टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लग सकता है इस बात के लिए। तो वही बातें मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर अंग में ही ऐसा चलन है कि जब कोई भी चीज किसी भी अंग में आ जाती है तो उस वक्त उसमें जो वाइब्रेशन होती है, जो लहरें बनती हैं, उनकी वजह से बाहर को स्किन से लेकर अंदर तक मीडियम जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है किसी भी चीज का है, किसी भी अंग का है, वहां से लेकर उसके बाहरी लिंक तक एक लिंक बना हुआ है और वो लिंक अपने आप को साबित करता है कि अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी कुछ निशानियां बाहर आई हैं। और स्टडी को जानते हुए, नेचर को स्टडी करते हुए, या पीछे का जो हमारा पास्ट था उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, इस चीज की जानकारी रखते हुए हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे। मैंने ये बात कही थी कि जैसे जैसे ये मेडिकल साइंस डेवलप हुई थी ना, तो सबसे पहले इसका नाम था एक्सीडेंटल मेडिसिन, अचानक कोई चीजें होने वाली, जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दी थी कि किसी को टेटनस होगी जिसको तुनखवा बोलते हैं, टेटनस होगी, बहुत बड़े दौरे पड़ रहे हैं, कमर पीछे को झुक रही है, जबाड़ा जो है उसका बिल्कुल क्रंच हो गया है, खोला ही नहीं जा सकता मुंह, अल्टीमेटली इस तरह की कंडीशन बार बार हो रही है तो लोग सोचते थे यार इससे तो अच्छा है मर ही जाए। और उस वक्त हमारे पास इजीली अवेलेबल क्या था, इजीली अवेलेबल अफीम थी, पोस्ट था, ये सब चीजें थी, तो उसको अफीम ज्यादा दे दी, जितनी आम नॉर्मल आदमी की डोज होती है, अब तो हम जानते हैं ना कि अफीम पोस्ट की कितनी डोज है, अफीम की कितनी डोज है, उसमें निकले हुए मार्फिन की कितनी डोज है, उस वक्त थी नहीं, लेकिन आम लोग जो उसका इस्तेमाल करते थे उससे ज्यादा दे दी, यार ये नहीं देखा जाता हमसे, इससे बेहतर ये है कि ये मर जाए, और उसको ज्यादा अफीम दे दीगी, देखा क्या कि वो ठीक हो गया, दौरे खत्म हो गए। क्यों, अब हम जानते हैं कि ओपियम में या मॉर्फिन में एंटी पेरिस्टाल्टिक मोशन इफेक्ट है, और जितने भी इस तरह के कन्वल्शंस हैं उनको कंट्रोल करने की कुव्वत है जो पैरालाइज कर देता है उन चीजों को। तो हुआ यही, उस वक्त ये एक्सीडेंटल बात ही है, मरने के लिए अफीम खाई और ये आदमी मर गया। जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, पारा हमारी जिंदगी में आया, मरकरी जिसको हम बोलते हैं, और इसी की वजह से जो लोग आज से या सुलाख से पीड़ित थे, इस तरह की तकलीफें उनको थी, और उनके लिए उन्होंने कहा यार अच्छा है ये, इससे मर जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दर्द पूरे शरीर में, अब इंद्री की दर्द जो है घुटनों तक पहुंच गई, जोड़ों तक पहुंच गई, चल हम सकते नहीं, इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या करें। उस वक्त इसको शर्मिंदगी की बात भी बोलते थे, तो अल्टीमेट पारा खा लिया कि ठीक है मर जाते हैं, इससे तो अच्छा यही था, और हुआ क्या, वो ठीक हो गया। अब बार बार जब ऐसा करने की नौबत आई तो देखा कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, मरकरी की वजह से ऐसा क्यों हुआ, तो इस तरह हमने ये जाना, जैसे ओपियम देने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि वो बच गया, अब हम जानते हैं, उस वक्त नहीं जानते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया मेडिसिन ऑफ एक्सीडेंट्स या एक्सीडेंटल मेडिसिन। ये एक्सीडेंटल थी, जब हम हमने शुरू किया। मैं बात फिर अपने आज के लेकर लेकर आ रहा हूँ। पहले हमें नहीं पता था कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है इसका लिंक कुछ अंदर की चेंजेस से है। शरीर के अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, इनका संबंध जो बाहर से है वो बाहर हमेशा आपने देखा होगा कई लोग खाना खाते हैं उनके नाक या चेहरे पे पसीना आ जाता है। और आसान बात करूं, अब मिर्ची लोग नहीं खाते ज्यादा, और जो पेपर से एलर्जिक है या कुछ एक्सकंडीशन है उनको अगर मिर्ची खिला दो तो उसी वक्त एक सेकंड में उसके चेहरे पे पसीना आ जाएगा, नाक पे पसीना आ जाएगा। तो क्या यह हुआ, वो जाने के बाद अंदर की जो वाइब्रेशन थी उसने अपना इफेक्ट शो किया, जो इफेक्ट हमें चेहरे पे नाक पे पसीने के रूप में हमें दिखाई दिया। तो मैं बीमारियों की बात अगर करूं, या बीमारियां भी आखिर किसी न किसी चीज की एंट्रेंस से हुई है ना, कोई एंटर हुआ है ना, कुछ ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से शरीर में कोई तब्दीली आई है। और अगर इस शरीर में कोई तब्दीली आई है और ऐसा नहीं है कि वो तब्दीली अंदर अंदर ही रह गई है, नहीं, क्योंकि पानी की तरह इसमें खला नहीं है, खाली जगह नहीं है, जो अंतर हो रहा है वो कंकर फेंकने से वही किनारे पे हो रहा है। इसी तरह ही हम जो इस शरीर के अंदर घटित हो रहा है उसकी वाइब्रेशंस या उसके एहसास, उसकी फीलिंग, उसके सिम्टम बाहर देख सकते हैं। और उसी चीज की जो ये शनाख्त मैं आपके सामने कर रहा हूं इन लेक्चरों में कि अगर कुछ भी ऐसा हो किसी अंग में, क्योंकि तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आसानी से समझ पाओ कि सिर के अंदर अगर कोई भी तब्दीली होती है तो फिर डिजीनेस होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, एचिमोसिस होगा, और ये फॉरगेटफुलनेस होगी। ये सब मोटी मोटी निशानियां आपको अभी भी याद होंगी कि इस तरह होता है तो हम समझेंगे कि ब्रेन में कोई विकार है। ब्रेन के अंदर जितने भी अंग उनमें से कोई विकार फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस विकार की वजह से ऐसा ये होता है। वो हमारा सेकंड राउंड होगा इस बात के लिए, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह ही हमने गर्दन की बात की थी, थायराइड ग्लैंड है तो जो यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड है था, या इसमें जो हमारी नालियां ऊपर से नीचे को जा रही है या कैरोटिड आर्टरीज जा रही हैं या कैरोटिड वेन्स जा रही हैं आ रही हैं, इस तरह का पूरा दारोमदार जो जा रहा है उनमें से अगर कोई भी खराबी होएगी तो फिर कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आएंगी जिससे हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई कौन से अंग में कोई डिफेक्ट हो गया है। जैसे आसानी से समझने वाली बात, थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, हाइपोथायराइड हो गया, हमने देखा कि वो बीबी तो बहुत मोटी ताजी बेचारी कुर्सी में बैठने योग्य नहीं है, बस जो स्किन है बहुत उसकी ड्राई है, बाल जो है उसके वो गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, लाइट हो रहे हैं, ये सब उसकी निशानियां हैं। ये बाहर हम देख पाएंगे तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है हमें, उससे पूछने की जरूरत नहीं है हमें कि तेरे को थायराइड है, हाइपोथायराइड है, तो वो पता चल जाएगा। और हाइपर अब खाता पीता बहुत है भाई, तो पांच पांच छह छह रोटियां खा जाता है, सुबह भी खा जाता है, शाम की खा जाता है, लेकिन फिर भी दुबला पतला ही है, एकदम जैसे कुछ खाता ही नहीं, हड्डियां निकली हुई है। तो हम कह पाएंगे कि भाई इस आदमी को हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो मतलब ये बाहर की निशानियां, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को कि ये बाहर की निशानियां हैं और शरीर के हरेक अंग से हमें इस तरह की सूचना बाहर मिलती है। जरूरत है इन चीजों को समझने की, और इनको समझने के बाद आप इजी निशाने पर पहुंच जाएंगे जिसको हम आज तो उसका नाम हमने रख लिया ना क्लिनिकल डायग्नोसिस, इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। और डॉक्टरों ने इसको एक जगह दे दी कि भाई ठीक है, हमारा डायग्नोसिस तो होगा लैब से, हमारा डायग्नोसिस तो होगा एक्सरे से, हमारा डायग्नोसिस तो ब्लड टेस्ट से होगा, लेकिन ये इसको हम इस बात से रख लेते हैं कि भाई ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो हमने बाहर देखा ऑब्जर्व किया उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं लैब से, वेरीफाई करते हैं एक्सरे से, ईसीजी से वगैरह वगैरह। तो वो जो बातें ऐसी होती हैं अब परफेक्ट हो गई है, पहले विश्वास हो या ना हो, गलत हो या ठीक हो, इसका निर्णय पहले नहीं था, लेकिन अब सदियों से चलते आ रहे इस मेडिकल साइंस ने बार बार इन निशानियों को देखा, समझा, वेरीफाई किया, लैब टेस्ट किया, एक्सरे किया, ईसीजी या जो भी कुछ किया आज की डिवाइसेस के मुताबिक, और इसने साबित कर दिया कि भाई इस शरीर के अंदर इस अंग में इस तरह की कोई खराबी आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंखों के, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के आंखों के नीचे कान के नाक के बिल्कुल पास येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं। अब येलोश टाइप के स्पॉट्स बन जाते हैं, स्पष्ट तौर पे ये कोलेस्ट्रॉल की निशानी है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो क्या हुआ, लिवर कहाँ पर है? आंखों में वो निशानी दे रहा है कि ये इस बात की निशानी है। अब इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, बार बार वेरीफाई कर लिया, तो बेशक कहा हमने फिर भी कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये क्लिनिकल प्रूफ है, लेकिन वेरीफाई हमने किया जब हमने उसका ब्लड टेस्ट किया। लेकिन अब हम इन सिम्टम्स पर रिलाई करना शुरू कर दिया, अब हम इनको यकीनन मानना शुरू कर दिया कि हाँ अगर इस तरह की बाहर निशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ ऐसा घटित हुआ है जो नॉर्मल नहीं है, और वो जो घटित हुआ है किस अंग में हुआ है, ये बाहर की निशानियां हमें इस तरह का बता रही हैं। इसलिए ये चैप्टर जो मैंने आपके सामने शुरू किया इस बात के लिए किया ताकि आप सब लोगों को पता चले कि अगर शरीर के अंदर हम चेस्ट पर पहुंच गए, नेक की बात करते करते हम चेस्ट में पहुंच गए और हमें पता चले कि चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर अगर कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर बाहर निशानियां क्या होंगी। और इससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि ये जो छाती है वो बनी हुई कैसे है। हालांकि एनाटोमिकल स्ट्रक्चर मैंने आप सब लोगों को बार बार समझाया है कि एनाटोमिकल मीन बना कैसे है, स्ट्रक्चर का ढांचा ये खड़ा कैसे हुआ है, उसको एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये जो पिंजरा टाइप गोल चेस्ट हमें दिखाई देती है, हड्डियां इसीलिए लोग पेट में क्यों इतनी लगा दी, हड्डियां इसीलिए लगा दी कि इसमें बहुत जरूरी सामान रहता है, बहुत जरूरी कार्रवाई करने वाले दफ्तर हैं, इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो इसमें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हमारे सिर में थी तो उसको पूरा ढक दिया, सिर्फ एक एंट्रेंस रहन दिया। छाती जो है इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति का हाउस है, ये प्रधानमंत्री का हाउस है, कार्रवाई तो ब्रेन की तरह चलेगी, लेकिन करेगा कौन, आगे कार्रवाई कौन करेगा, वो हमारा यहीं पर गृह मंत्री है, यहीं पर ही प्रधानमंत्री है, इसलिए इनकी भी निगरानी, इनकी भी सेफ्टी इस तरह कुदरत ने कर दी है। और इसकी शनाख्त के लिए मैंने आप सब लोगों को कहा था कि ये हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी का विस्तार मैंने आप सब लोगों को बार बार बताया था कि भाई ये 26 अलग अलग वर्टिब्राज हैं, मन के जिसको हम बोलते हैं, जिनके अंदर एक कैनाल होती है और जिन मनकों के बाहर हॉर्न्स बने होते हैं ताकि जितनी भी मांसपेशी, जितनी भी मांसपेशियां बाहर से आए वो इसके साथ बच जाए, टाई हो जाए, ताकि ये पूरी तरह अपनी सेहत में रह सकें और पूरा कंट्रोल इसका संभाल सकें, वेट उठा सकें। इसलिए इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैंने आप सब लोगों को दी थी। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि जो पसलियों का ढांचा है, ये पसलियां 24 गिनते हैं, 12 पेयर, 12 जोड़े, 12 उधर हैं, 12 उधर हैं। इन पसलियों की डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई ये 12 ऐसे ही नहीं कि ग्लोब बन के आ गया, चारों ओर लपेट लिया है, ऐसा नहीं है। पहली 7 हड्डियां रिब्स जिनको हम बोलते हैं वो सामने स्टर्नम के साथ बटी हुई है। स्टर्नम की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दी थी कि इसके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा मेनुबरियन स्टर्नाई है जो हमारी रीढ़ क्लेविकल हड्डी, जिसको हम असली की हड्डी है उससे जुड़ी हुई है। उसके बाद ये स्टर्नम की शैफ्ट हैगी है सामने, उसके नीचे ज़िफॉइड स्टर्नम का एक छोटा सा पोर्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं पहले दे चुका हूं, क्योंकि अभी हमने चेस्ट की बात करनी है। और ये पसलियों की बात की थी कि 7 पसलियां बिल्कुल इस स्टर्नम के साथ फिक्स की गई हैं और 3 पसलियां फिक्स नहीं की गई हैं, इसके साथ नहीं है, वो जो आठवीं पसली है वो सातवीं की हाथ पकड़ लेती है और नौवीं पसली वो आठवीं का हाथ पकड़ लेती है। तो इस तरह करके एक दूसरे को पकड़ते हुए थोड़ी पीछे हट गई है ताकि एब्डोमेन को पेट को पूरा फैलने का समय मिल जाए, क्योंकि इसमें तो बार बार खुराक आएगी भी, गैस बनेगी भी, रिलीज भी होगी, सब कुछ होगा, इसलिए इसको बार बार फैलने की जरूरत पड़ती है और ज्यादा छाती से ज्यादा फैलने की इसको जरूरत है, पता नहीं कब कैसा हो जाए। इसलिए वो जो दो पसलियां नीचे बच जाती है वो केवल रीढ़ की हड्डी के साथ लगी हुई है, सामने वो फ्री है कि कोई बात नहीं, फैलना है तो फैल जाए, जितना भी एब्डोमेन फैल सकता है वो फैल जाए। तो ये ऐसा हम लोगों ने आप सब लोगों को बता दिया था कि वो 12 की 12 पसलियां साइड राइट दाहिने साइड बाएं साइड इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और नीचे की दो नहीं जुड़ी हुई है। फिर हमने ये कहा था कि इनके जोड़ जुड़ने का पोस्टल कार्टिलेज इन पसलियों को एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस में रखने के लिए हम लोग कुदरत ने और मांसपेशियां लगाई हुई हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। इंटर मीन्स बीच में, कॉस्टल मीन्स रिब्स मसल, पसलियों के बीच बीच में जो मांसपेशी है जो इन पसलियों को अपनी जगह पर रखती है उसको इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इसी तरह ही जहां जहां इनका ज्वाइंट होता है, सामने ज्वाइंट है स्टर्नम के साथ, पीछे ज्वाइंट है रीढ़ की हड्डी के साथ, उसके लिए भी स्पेशल कार्टिलेज है और वो कार्टिलेज जो है इनको वहां वहां पर बांधा रखता है। तो मैंने इससे आपको ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये जो चेस्ट है इसकी हम आज बात करने लगे। अब इसके एंटर हम करेंगे कि चेस्ट के बारे में ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है, ये चेस्ट से गुजर के जा रहा है और उस चीज को वो चेस्ट के मिडल से गुजरता है जिसका नाम हमने रख दिया मिडिया स्टाइनम। मिड का मतलब आधा उधर बीच में हो गया ना, तो इसी तरह मिडिया स्टाइनम स्टर्नम के पीछे बिल्कुल सेंटर में, छाती के सेंटर में एक ऐसा कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बाईपास है जिससे ऊपर की चीजें नीचे आ रही हैं और नीचे की चीजें ऊपर सिर को जा रही हैं, उसको कॉरिडोर हमने बोल दिया या मिडियास्टाइनम बोल दिया। अब मिडियास्टाइनम में बहुत सारे कंटेंट्स हैं जिसमें हमने कहा था कि नाक से एक नाली शुरू होती है जो फेफड़ों तक जाती है और उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, लेकिन लैरिंग्स एक जगह आकर गर्दन में आकर रुक गई और दूसरी तरफ उसके आगे मुंह की बात आई थी, तो मुंह से एक नाली शुरू होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं और वो जो फेरिंग्स है वो भी एक जगह आकर रुक गई जहां पर आके सांस वाली नाली खुराक वाली नाली आकर रुक गई है, उसको हमने बोल दिया एपिग्लोटिस, एक जंक्शन का नाम रख दिया हमने एपिग्लोटिस। वहां पर आके इनका आपस में राउट चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, सा वाली नाली सा की नाली आगे आ जाती है, खुराक वाली नाली पीछे आ जाती है क्योंकि उसको तो आगे नीचे और जाना है, स्टोमक की तरफ जाना है, और इसी तरह ही सांस वाली नाली आगे आ जाती है। लेकिन एक और तब्दीली यहां पर होती, क्या है उसकी दूसरी तब्दीली? ये है कि इस एपिग्लोटिस से नीचे का जो पोर्शन खुराक का है उसका नाम हमने बदल दिया, इसको ईसोफेगस कह दिया, और सांस वाली नाली जो इस एपिग्लोटिस से आगे फेफड़ों की तरफ जा रही है उसका नाम हमने बदल दिया, उसको ब्रोंकस कह दिया। और अब ब्रोंकस तो दो हो गई क्योंकि दो फेफड़े हैं, ईसोफेगस एक ही स्टोमक में जा रही है वो एक ही रही, फेरिंग से ईसोफेगस हो गया, लैरिंग से ब्रोंकस हो गया, लेकिन ब्रोंकस दो हो गई इसी जंक्शन से, और एक राइट फेफड़े को दाहिने फेफड़े को जा रही है, एक बाएं फेफड़े को जा रही है और सांस पूरा हमारा उसी तरह चल रहा है। अब बात क्या है, अब ये जो जंक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुराक के लिए भी है, सांस के लिए भी, खुराक के बिना हम कुछ देर रह सकेंगे लेकिन हवा के बिना तो नहीं रह सकेंगे ना, हमारी लिमिट 3 से 5 मिनट तक ही है मैक्सिमम, इसलिए ये बड़ा जरूरी कार्रवाई जरूरी रास्ता है। जैसे अब लड़ाई चली ना, जी मसा बातें बता रहे थे, अब तेल का आदान प्रदान वहां से होना है और जिस दरिया के उस लिंक से, समुन्द्र के लिंक से होना है, अगर वो ही नहीं खुला होगा, वो ही किसी कंट्रोल में होगा, तो उसकी मर्जी है, आने दे मर्जी है ना जाने दे। और अगर इसमें कोई नुक्स हो गया तो कितने देश प्रभावित होंगे, पूरा देश ही, दुनिया ही प्रभावित हो जाएगी उससे। हाँ जी, सो इसलिए हर्मस उसको बोलते हैं, तो इसके लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। और इस एपिग्लोटिस की रक्षा करने के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, इसके ऊपर गिलाफ एक तरह दिया कुदरत ने, वो स्प्रिंग जैसा है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया का ऐसा गिलाफ है जो इसके ऊपर स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं, जैसे पसलियां एक दूसरे के बजी हुई है ना, और उनको बीच बीच में जो उसको मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल जिसका नाम मैंने लिया, इसी तरह ही ट्रेकिया को भी स्प्रिंग टाइप कार्टिलेज सब्सटेंस है जो इसको बोलता है, बांधता है। और ये ट्रेकिया जो है खास तौर पे इस जंक्शन को, और इस जंक्शन के साथ ही ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना कावा, वो नाली जो ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेकर दिल को जा रही है, और कार बज रुकी जाए तो क्या होगा। इसी तरह ही हार्ट से निकलकर जो नालियां ब्रेन को खून सप्लाई कर रही हैं कि भाई लो खुराक भी लो ऑक्सीजन भी लो तो ब्रेन काम करे, वो दो नालियां हैं कैरोटिड आर्टरीज। तो वो कैरोटिड आर्टरीज भी यहां से होकर गुजर रही हैं, गर्दन से ही निकल रही हैं, और इसको उसने कवर कर दिया है। तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि ये पूरी चीजों की एंट्री नीचे जा रही है चेस्ट में, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। और ये जो ईसोफेगस की मैंने बात की कि बाकी तो भाई बोरेंस ब्रोंकस आई तो दोनों फेफड़ों में चली गई, और ऊपर से जो खून की नाली आई वो हार्ट तक रह गई, वो चेस्ट तक उनका लिमिटेड। लेकिन ईसोफेगस को छाती को पार करके नीचे जा रहा है, और दूसरी वो नाली जो नीचे पूरे शरीर को खून की खुराक की ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, जिसको हमने एओर्टा बोला था और जगह जगह उसके नाम बदल दिए थे। पहले जब हार्ट से वो शुरू हुई थी उसका नाम था असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद फिर आर्क ऑफ एओर्टा वो घूम गई, घूम के पीछे की तरफ चली गई और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे जाने लगी, निकली तो यहीं से ना, और उसको हमने आर्क ऑफ एओर्टा बोल दिया था। और फिर छाती में रही तो उसका नाम थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा, थोरक्स में है ना लेकिन है डिसेंडिंग, नीचे को जा रही है, थोरेसिक डिसेंडिंग एओर्टा नाम रख दिया। और जैसे ही वो डायाफ्राम, वो एक मेम्ब्रेन है जो छाती और पेट को सेपरेट करता है आपस में, उससे गुजरकर नीचे गई तो उसका नाम हो गया डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। आगे फिर चलेंगे इसकी बात के लिए, हम छाती तक रुक जाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है हमारा एओर्टा खून सप्लाई करने वाली नाली, ये भी नीचे जा रही है, ईसोफेगस भी नीचे जा रही है, और ये इनको हम फ्रेनिक ओपन बोलते हैं। फ्रेनिक इस डायफ्राम का दूसरा नाम है, और फ्रेनिक नर्व भी है जो इसको सप्लाई करती है, उसका भी आगे वेरवा आएगा तो हम बताएंगे ऐसा लोगों को फ्रेनिक नर्व क्या है, कैसे करती है। मैं सिर्फ छाती तक लिमिटेड हूं कि छाती से पेट में जाने तक बहुत सी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम है, ईसोफेगस इंपॉर्टेंट तौर पे है, ये जो खून नीचे लेके जाने वाली नाली है एओर्टा जिसका नाम बोला वो है, उसके बाद नीचे से ऊपर को खून लाने वाली उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। जैसे मैंने ऊपर कहा सुपीरियर वेना कावा जो ब्रेन का खून नीचे लेकर आई, जो नीचे से ऊपर खून लेकर जा रही है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, वो भी तो यहीं से गुजरेगी। तो तकरीबन 7 डिफरेंट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग है इस डायफ्राम में, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ना चेस्ट का और अब्डोमेन का, 7 डिफरेंट ओपनिंग्स हैं इसमें जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने जाने के लिए। लेकिन ये निकलते कहां है, जिसको हमने मीडिया स्टाइनम बोला, जो छाती का सेंट्रल भाग है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनका भी मैंने आपके सामने नाम दिया, ये सब चस्ट के बीचों बीच ऊपर से नीचे तक निकलते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, ताकि आदान प्रदान होता रहता है, आवाजाही होती रहती है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर कोई नुक्स हो गया तो ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें कुछ चीज में कोई नुक्स हो गया, अब कितनी चीजें हैं कि कैसे पता चले कि ईसोफेगस में नुक्स हो गया है, या पैरिक्स में नुक्स हो गया है, या ब्रोंकस में नुक्स हो गया है, या एओर्टा में नुक्स हो गया है, या वेना कैवा में नुक्स हो गया है, कितनी जो चीजें हैं। ये बात मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि भाई अगर इनमें से किस चीज में भी नुक्स हो जाता है तो आपको कैसे पता चले बाहर। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तो जाएंगे ही जाएंगे, हम आपको वो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस की बातें हैं वो बताएंगे। उसके बाद अगली बात इस छाती के बारे में पूरी हम कर लें तो फिर हम बताएंगे निशानियां क्या है। जब छाती को हमने सेंट्रलाइज एरिया, जिसको हमने मिडियास्टाइनम कहा था, उसमें बांट दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, एक दाहिने साइड हिस्सा रह गया, एक बाएं साइड हिस्सा रह गया, और दाहिने और बाएं साइड को जो हिस्सा रह गया उन दोनों चीजों को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। प्लूरा एक इस तरह का मेम्ब्रेन है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर कवर किया हुआ है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बहुत सारे अंगों के ऊपर कुदरत ने एक इस तरह का गिलाफ चढ़ाया हुआ है, और क्योंकि हर अंग अपनी मूवमेंट में है, किसी की ज्यादा मूवमेंट है, किसी की कम मूवमेंट है, किसी ज्यादा है, किसी के कम है, और वो जो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, उसके मुताबिक उसको फैलना होता है सुकड़ना होता है, फैलना होता है सुकड़ना होता है, और ये फैले सुकड़े इसकी बाहर की बाउंड्री को कोई हर्ज ना हो, इसकी बाउंड्री को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हरेक अंग के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा गिलाफ चढ़ाया है, और उस गिलाफ का जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ है उसका नाम है प्लूरा, और दाहिने साइड भी फेफड़ा है बाएं साइड भी फेफड़ा है, इसलिए एक राइट प्लूरा हो जाएगा, एक लेफ्ट प्लूरा हो जाएगा। ये जो प्लूरा है ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, और ये जितने भी, जैसे हम बोलते हैं कि भाई दो लोब है बाईं तरफ, तीन लोब है दाईं तरफ, और इन लोब्स के अंदर तक भी ये जाता है और उसको अलग अलग सेपरेट दोनों को, तीनों को या दोनों को करता है, और ये इसकी खासियत है कि उनके फैलने या सुकड़ने में इसको फैसिलिटेट करता है। इसके जितने भी कवरिंग्स हैं, जैसे हार्ट के ऊपर कवरिंग है पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं, और एब्डोमेन के ऊपर जो स्किन के नीचे का जो आंतरियों के ऊपर है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो सभी कवरिंग जितने भी है ना, ये पूरे डबल लेयर कवर्ड हैं, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ्लूइड कुदरत ने रख दिया है ताकि अगर ये फैले या सुकड़े अंदर के अंग, और उनको फैसिलिटी उतनी मिल जाए। तो मैं बात कर रहा हूं चेस्ट की। ये जो चेस्ट है ना, इसके प्लूरा के दो हिस्से हो गए, और इस प्लूरा के जो दो हिस्से, एक प्लूरा को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, जो बाहर रह जाता है उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। बाहर वाला जो है पसलियों के अंदर अंदर तक लगा होता है, अंदर वाला जो है वो फेफड़ों के साथ साथ चिपका होता है, फेफड़े फैलते हैं वो भी फैल जाता है, फेफड़े सुकड़ते हैं वो भी सुकड़ जाता है, और इसके अंदर का जो फ्लूड है वो इसको फैसिलिटेट करता है फैलने के लिए। इस तरह दो बैग हो गए, जिन दोनों बैग में हमारे दो फेफड़े रहते हैं, और उसके बाद इन दोनों फेफड़ों के बीच में हमने मिडियास्टाइनम बनाया था, मिडियास्टाइनम के अंदर ही लिपटा हुआ हमारा हार्ट भी है, हार्ट का बहुत सारा पोर्शन भी है, और हार्ट को आप सभी लोग ऐसे ही मोटे तौर पर जानते हैं कि भाई हार्ट तो छाती में खबे तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ हम मानते हैं, ठीक है ज्यादा बाईं तरफ होता है, उसकी जो सरफेस एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं, मैंने बहुत बार यहाँ इन प्रोग्राम में बताया भी, और आगे आने वाले समय में फिर दोबारा बताऊंगा समय समय के मुताबिक कि हार्ट अंदर है, लेकिन अब हम इतने काबिल हो गए हैं इस जानकारी में कि हम देख पाए कि इसके वाल्व कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, कहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, कहाँ पर राइट एट्रियम है, कहाँ पर लेफ्ट एट्रियम आता है, छाती से ऊपर ही हम जान सकते हैं कौन सा वाल्व जो है वो कहाँ पर है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को जाने वाला जो वाल्व है वो कहाँ पर होगा, और अगर उसके अंदर कोई खराबी है तो हम छाती के ऊपर से कैसे जानेंगे, हम जान सकते हैं। इसी तरह ही वेंट्रिकल का जो और ऊपर वाला जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनमें से लगा हुआ जो वाल्व है वो उसको जानेंगे तो कैसे जानेंगे, तो हम छाती के ऊपर से ये चीजें जान सकते हैं कि भाई वो कहाँ पर है, और वहां पर की आवाज जो है वो हमारे कानों में फिट है, हमारे ब्रेन में सेट है, और वो आवाज उस तरह की नहीं होगी तो हम कहेंगे ना इसके तो ट्राइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, इसके तो बाइकस्पिड वाल्व में नुक्स है, या इसके लूनर वाल्व में है, सेमी लूनर वाल्व जो जैसे पल्मोनरी का होता है, इसी तरह ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाहर से ही। ये निशानियां मैं बताऊंगा आप सब लोगों को बताऊंगा, मैं सिर्फ हर चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किसी को कोई ये ना रह जाएगी मुझे तो समझ नहीं आया ये क्या कहा, ये ना रहे, मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस तरह बताऊं कि आप सब लोग समझ जाएं मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि छाती के अंदर दो फेफड़े हैं, बाईं तरफ के फेफड़े में दो लोब हैं, और बाईं तरफ में ज्यादातर हिस्सा जो है हार्ट का होता है, और हार्ट की जो बाउंड्री है ना राइट साइड में बाउंड्री, वो जो हमारी सामने की स्टर्नम है ना, स्टर्नम की हड्डी से सेंटर से मिले, जैसे तहसीलदार आते हैं ना निशानदेही करने के लिए जमीनों की, तो जरीब होती है उनके पास, वो जरीब से वो पत्थर लगे होते हैं उसे वो नापना शुरू कर देते हैं, यहां से नापेंगे तो यहां तक ये भाई तुम्हारी है, यहां पर पत्थर लगा दो या निशान लगा दो कि ये तुम्हारी जमीन है, इसके इधर इसकी जमीन है, रौला हो जाता है कुछ कुछ, वो सेल्फ सॉल्व कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेफ्ट साइड में हार्ट है, लेकिन हार्ट का कुछ हिस्सा राइट साइड में भी है, और वो मैंने निशान दे करके आपको बता दी कि अगर स्टर्नम के सेंटर से हम मिनती शुरू करें तो स्टर्नम के सेंटर से 1.2 सेंटीमीटर सेंटर से राइट साइड को हार्ट की बाउंड्री है, उसका एरिया वहां तक है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसके मुताबिक कि अगर इस एरिया तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हार्ट की हम निशानियां आपको बताएंगे तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि हार्ट में है, ऐसा ही नहीं कहेंगे कि हार्ट ये जो फेफड़ों में ही है, नहीं, फेफड़ों और हार्ट की जितने भी चेंजेस हैं आपस में वो आप अलग अंदाजा लगा सकेंगे कि नहीं ये तो फेफड़ों में हार्ट में नहीं है, क्योंकि आपको निशानियां पता होगी। इस हिसाब से ये जो चेस्ट के अंदर का जितना भी सिस्टम सेट किया हुआ है वो कम्पैक्ट टाइप का बहुत इम्पोर्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें, और इन सभी में हर एक की अपनी बाउंड्री है, और जब भी किसी में कोई खराबी आएगी उसकी अपनी रफ्तार में उसके अपने चलन में रुकावट आ जाएगी, और वो जो रुकावट आएगी आस पड़ोस को तकलीफ देगी, आस पड़ोस का चलन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तकलीफ अगर हार्ट में हुई या तकलीफ मिडियास्टाइनम के किसी और ईसोफेगस में हो गई तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट साथ वालों को भी होगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो ये सब चीजें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम जानें कि भाई ये ईसोफेगस में है या हार्ट में नुक्स आ गया है, या एवेना केवा का नुक्स है, या एओटा का नुक्स है, ये सब चीजें हम आपको इन्हीं प्रोग्रामों में बताएंगे कि किसमें नुक्स हो तो आप क्या कैसा समझेंगे, बाहर की कौन कौन सी निशानियां आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि चेस्ट है क्या, कौन कौन सी हड्डियों से बनी है ये, वो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपनी पूरी दूरी में एक दूसरे के साथ बची रहती हैं और एक केज बना देती है, पिंजरा बना देती हैं, और उस पिंजरे में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, और उसका नाम मैंने मीडिया स्टैंड में बोल दिया, मीडिया स्टैंड में उसके बाद इसोफेक्स बोल दिया, उसके बाद हमने ये जो मेम्ब्रेन था डायफ्राम का उसकी बात हमने कर दी, उसके बाद हमने ट्रेकिया की बात कर दी कि उससे नीचे ब्रोंकस जा रही है, उसके नीचे जो है इसोफेक्स जा रहा है, ये सब बातें यहाँ से निकली। एक बात जो आज के इस प्रोग्राम में, अभी हार्ट की मैंने बात की है, लंग्स की मैंने बात की है, हार्ट और लंग्स जो है वो अपने अपने दायरे में कवर्ड है, उनको बाउंड्री दे दी कुदरत है कि भैया पेरिकार्डियम के अंदर अंदर ही तुमको रहना है, ये फेफड़े हैं ये इसके अंदर अंदर ही तुमको रहना है। लेकिन जैसे ही फेफड़ों में कंजेशन हो गया, निमोनिया हो गया, फिर जैसे ही हार्ट में कोई नुक्स हो गया, कोई वाल्व काम नहीं कर रहा है, कोई जो जो उसकी आर्टरीज हैं उनमें कोई कोरोनरी आर्टरी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो साइन एंड सिम्टम पैदा करेगा। जैसे वो मैंने रोडी वाली बात शुरुआत में कही थी कि आप कंकर फेंक दें पानी में, जैसे ही आप उसमें कंकर फेंक देंगे लहरें निकलेंगी, ठीक उसी तरह ही हार्ट में अगर कोई चेंजेस आएगी तो किस तरह की लहरें होंगी हार्ट में या फेफड़ों में, अगर कोई तब्दीली आ रही है तो किस तरह की चेंजेस होंगी जो बाहर आप महसूस कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस है, लोबर निमोनिया है, इस तरह की अलग अलग नाम है बीमारियों के, और उनमें अलग अलग तरह की चीजें आपके सामने आएंगी कि भाई क्या क्या निशानी। पहले हम जनरल निशानियों की बात करेंगे, अगर फेफड़े में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, हार्ट में नुक्स हुआ तो बाहर क्या देखेंगे, मीडिया स्टाइन के किसी कंटेंट में कोई ऐसा नुक्स हुआ तो फिर बाहर आप क्या देखेंगे, ये चीजें मैंने आप सब लोगों को आगे इन प्रोग्रामों में बतानी है। और आज का ये चैप्टर मैं समझता हूँ कि मैं आगे ना करूँ, हाँ एक बात रहेगी, एक बात रहेगी, वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में पहले भी बात हुई होगी क्योंकि तो बड़ा लंबा समा हो गया बोलते हुए मुझे, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, अरे भैया काहे फिरता फूलिया फूलिया, तब 10 मास उर्द मुख रहता, शोधन कैसे भूलिया बढ़िया, और एक को वो बातें भूल गई है, जब माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ तब तेरी रक्षा कौन कर रहा था। हाँ जी, लेकिन मैं जो मेडिकल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, मेडिकल व्यू पॉइंट ये है कि शरीर में अपनी एक इम्यूनिटी है, बच्चा पैदा हो जाता है माँ से तो अलग हो गया ना, कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है जो उसको बचा के रखती है, अलग अलग विंग है, सेक्शन है प्रोटेक्शन के लिए। तो उस वक्त कुदरत ने जैसे ही स्पर्म एंड ओवम आपस में मिले, जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट हुई, जैसे ही वो डेवलप करना शुरू हुआ, कुदरत ने कहा कि भाई अब तेरी खुराक तो तेरे को माँ दे देगी, माँ की तरफ से कुछ ऐसा भी आ सकता है जो तेरे को नुकसान दे दे, और उसको बचाने के लिए भी ये हम तेरे को एक ग्लैंड दे रहे हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, जिसको जैसे हम बाहर का बात करते हैं कि लिम्फ नोड्स की, कि जितना जहां जहां आर्टरी है वहां वहां वेन है, जहां जहां वेन है ये वहां वहां लिम्फ नोड है, वहां वहां लिम्फ चैनल है, वहां वहां लिम्फ चैनल के साथ नर्व है, ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और इसका सबसे बड़ा हेड क्या है, सबसे पहले तो अलग अलग तरह जेल है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, उसका बड़ा बॉस कौन है, स्प्लीन है, तिली है जो हमारे लेफ्ट साइड में होती है, उसके बाद बहुत बड़ा बॉस कौन है, कहीं अभी भी नहीं बात करना है, उसके बाद जो तिली है, अगर मान लीजिए तिली से भी कोई चीज नहीं बीमारी हुई, कैंसर हुआ, हम लोग देखते हैं कि लिम्फ नोड फूट गई है तो हम बोलते हैं अभी डाउटफुल है कुछ, हम टेस्ट करने शुरू करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि लिम्फ नोड तो बहुत शरीर में और भी फैल गए, उसके बाद हमने देखा कि ना तिली भी बढ़ रही है क्योंकि तो इनका बॉस है खून को साफ करने वाला, जो गार्बेज आ रहा है किसी बीमार अंग से, उस बीमार अंग से आने वाले इस गार्बेज को ठीक करने के लिए जो हमारे पास अंग दिया हुआ कुदरत ने, उसका नाम स्प्लीन है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि स्प्लीन का भी एक बॉस है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते, और थाइमस ग्लैंड हार्ट के ऊपर छाती के अंदर लगा होता है, और थाइमस ग्लैंड कुदरत का वो तोहफा है इस जीवन के लिए कि जब तुम्हें तेरे पास और कुछ नहीं था ना, उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड के पास प्रोटेक्शन करता है, जितना भी गार्बेज जितना भी कुछ ऐसा उस वक्त पैदा हो रहा था जो तेरे को नुकसान पहुंचा सकता था उसको सेट करने के लिए इट इज इम्पॉयर्ड ऑर्गन। और ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है ये भी तो भाई इसी मीडिया स्टैंडर में ही है ना, ये भी हार्ट के ऊपर लगा हुआ है ना। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अचंभा हुआ होगा कि शरीर के अंदर रहते हुए भी तो गार्बेज बनता था ना, और उसी में रहता था, उसको न्यूट्रल करने के लिए ठीक करने के लिए क्या चीज थी। तो ये थाइमस ग्लैंड उस वक्त इस शरीर की रक्षा कर रहा था कि भाई ठीक है तेरी रक्षा माँ पे जो करना करती है हम भी तेरी रक्षा करेंगे ताकि तुम जिंदा रहे और बाहर आ जाए। और जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है बड़ा होना शुरू होता है ना उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थाइमस ग्लैंड का काम कम हो जाता है और थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। बच्चा छोटा था वो बड़ा हो रहा है, उसका थाइमस ग्लैंड उसकी प्रोटेक्शन करने वाला, पहले माँ बाप रक्षा करते हैं ना उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है ना तो वो बोलता है ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक तरह माँ बाप का दर्जा रखने वाला हमारे पास उस वक्त थाइमस ग्लैंड होता है भाई, ये भी इस मीडिया स्टैंडम का ही हिस्सा है। और इसमें अगर कोई खराबी आएगी और मान लिया जाए दिल्ली से कुछ नहीं हुआ ये पूरे शरीर में लिम्फ नोड क्या चीज थी, तो ये थाइमस ग्लैंड उस वक्त इस शरीर की रक्षा कर रहा था कि भाई ठीक है तेरी रक्षा माँ तो जो करना करती है हम भी तेरी रक्षा करेंगे ताकि तुम जिंदा रहे और बाहर आ जाए। और जैसे जैसे बच्चा बाहर आता है बड़ा होना शुरू होता है ना उसकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, थाइमस ग्लैंड का काम कम हो जाता है और थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। बच्चा छोटा था वो बड़ा हो रहा है, उसका थाइमस ग्लैंड उसकी प्रोटेक्शन करने वाला, पहले माँ बाप रक्षा करते हैं ना उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है ना तो बोलता है ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक तरह माँ बाप का दर्जा रखने वाला हमारे पास उस वक्त थाइमस ग्लैंड होता है भाई, ये भी इस मीडिया स्टैंडम का ही हिस्सा है। और इसमें अगर कोई खराबी आएगी और मान लिया जाए दिल्ली से कुछ नहीं हुआ ये पूरे शरीर में लिम्फ नोड हुडकिंस डिजीज उसको बोलते हैं, बहुत से शरीर में इस तरह की कृतियां

0: उंगली पकड़ के चलाते हैं, बच्चा जवान हो जाता है ना तो बोलता है ठीक है अब ये अपनी रक्षा आप करने योग्य, फिर माँ बाप पीछे हट जाते हैं। यही एक तरह माँ बाप का दर्जा रखने का हमारे पास उस वक्त थाइमस ग्लैंड होता है भाई, ये भी इस मीडिया स्टैंडम का ही हिस्सा है, और इसमें अगर कोई खराबी आएगी और मान लिया जाए दिली से कुछ नहीं हुआ, ये पूरे शरीर में लिम्फ नो हुडकिंस डिजीज उसको बोलते हैं, बहुत से शरीर में इस तरह की गलतियां बन गई, बहुत कुछ ऐसा बन गया जो कोई और हल नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये थाइमस ग्लैंड भी फिर बड़ा होना शुरू हो जाता, थाइमस ग्लैंड का काम भी बढ़ जाता है। नहीं भाई अब किसी से नहीं संभलता, अब लिम्फ नोड नहीं कंट्रोल कर पाते, अब तिली भी बेचारी नहीं कंट्रोल कर पाती, अब तुम सहाई हो भाई, अब तुम मेरी मदद करो, तो उस वक्त ये जो थाइमस ग्लैंड है ये फिर बड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का समय मेरा समाप्त हो रहा है, अभी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए इस छाती के संबंध में, अगले प्रोग्राम में फिर हम इसका वेरवा आपके सामने कहेंगे, और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कम से कम वो इंटरेस्ट लेकर सुने, रोजाना इन प्रोग्रामों को सुने, और अगर अच्छे लगे तो दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह ऐसे नहीं कि मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चर कर रहा हूं, मैंने कहा लेक्चर किया और बस चलता बन, नहीं, मेरा काम यह है कि जो भाषा आप समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप समझते हैं, जो आपके रूटीन लाइफ के साथ संबंधित है, इस तरह की बातें मैं आपसे करूं जो आप आसानी से समझ पाए कि मैं कह क्या रहा हूं, बता तो शरीर के बारे में रहा हूं, लेकिन आप इसको इस तरह समझ जाएं जिस तरह आप अपने खेतों के बारे में जानते हैं, जिस तरह आप अपने जानवर और पशुओं के बारे में जानते हैं, इस शरीर के बारे में भी आप उस तरह जाने कि भाई हर चीज आपकी नजर में हो कि कैसे कैसे हो। तो मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूं, 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के बारे में आप समझना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। कंसल्ट करने की कोई फीस नहीं है, किसी भी दुनिया के कोने से आप मुझे कॉल कर सकते हो, अब तो व्हाट्सएप है हर जगह ही है, कहीं से भी आप बिना पैसे के कॉल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कॉल करना चाहते तो ईमेल है homeomedicine@yahoo.com। तो किसी भी वक्त ईमेल करके भी आप अपना सवाल मेरे पास भेज सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। उस तरह ही मेरी बेस्ट जजमेंट जो 52 ईयर्स मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस फील्ड हो गया, और इस समय पे पढ़ते पढ़ाते जो नॉलेज मैंने इकट्ठा किया मैं वो आप सब लोगों को दे जाना चाहता है। तो किसी को किसी जरूरत हो, अगर आप होम्योपैथिक तरीके से किसी बीमारी का इलाज ही करवाना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हो 4086871899। आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दवा करता हूँ, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही मेहरबानी, बहुत वड्डियां जानकारियां। दोस्तों ताड़ा भी धन्यवाद, चीमा साहब ताड़ा भी, मिलते हैं जी परसों नूं, फिर दियो इजाजत मेरे वल्लों, बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी।